एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM बैंड 101.9 MHz पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में रिले होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। उसके बाद 6:05 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग

0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए सबसे पहले आज का चिंतन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान

भगवान की योजना का हिस्सा है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का पाठ आज भाग 223 प्रसारित किया जाएगा। 6:45 पर और शाम को पुनः शाम को 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। इसका भाग एक प्रसारित होगा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर चंचल वर्मा का।

सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। नौ बजकर 30 मिनट पर सुबह और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार डांसिंग पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुबह 10 बजे अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की है। रंग तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय 11 बजे। 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर समाचारों के बाद आप सुनेंगे 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत बातचीत होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर। कहानी पद्मश्री की अंतर्गत बात होगी बसंती देवी बिष्ट, उत्तराखंड की पहली जागर लोक गायिका के बारे में। मुझे कुछ कहना है इसमें आप बात सुनेंगे आज ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा, उपयोगी टिप्स जिसमें कि आपको टिप्स दिए जाते हैं खाना बनाते समय कुछ काम के टिप्स। संवादक चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव रहेंगे। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश सुनिएगा संवादक ममता सिंह। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर सुनिएगा झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला, इसका प्रसारण समय रहता है 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिलिए में विग मेकर अनवर पावस्कर से, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा हास्य नाटिका मशीन का चक्कर, लेखन शांति स्वरूप प्रधान का है, निर्देशन विनोद रस्तोगी का। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात 10:30 पर और 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ, आज इसका भाग 223 आप सुनेंगे।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास,

सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एस एल कंडारा। आपसे बातचीत

0: बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। तो आइए सुनते हैं वायलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेम्बर म्यूजिक से लेकर फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किए जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित SL कंडारा जी। कंडारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: शुक्रिया आप विविध भारती का और श्रोताओं का।
1: आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित SL कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला।
2: जयंत जी, वायलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नज़र आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियाँ हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्ता करके एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक ये इनकारनेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16 सेंचुरी में
1: जी
2: इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडेजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे, उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ 1530 में। और 1530 में इस साज के तीन तार उसके साथ बंधे हुए थे, 3 वायर्स इंस्ट्रूमेंट। अब विविध भारती में तो अपने लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे। तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो इस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब स्टेनर और एंटोनियो स्टेडी वेरी।
1: अच्छा।
2: ये दो लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया।
1: जी जी।
2: अब स्टडी वेरियस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है और मेरे पास भी जो वायलिन एक है
1: जी,
2: वो स्टडी वेरियस मैक है और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है।
1: हाँ जी।
2: बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है।
1: इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ?
2: ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण, यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ
1: जी,
2: तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था।
1: अच्छा।
2: ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: वो इसका उपयोग बैंड में करते थे। और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर
1: जी
2: उनके भाई थे, तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की।
1: हाँ हाँ।
2: और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की।
1: वाह। हाँ।
2: ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17 सेंचुरी में शुरू हुआ। और

0: उस ज़माने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया
1: जी
0: कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे।
1: जी जी कंडारा जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है दोनों जगह जो बजता है
0: जी,
1: वो क्या खास फर्क है?
0: देखिए, पश्चिम में जो ट्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लोकासल्स वगैरह
1: जी,
0: ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: मंद्र तार जो है मिलाते मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो ऋषभ तार सप्तक की, और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला। फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्ध हस्त अधिकार है,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते।
1: इनमें बहुत से स्टालवार्ड्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेन्युहिन। बहुत से
0: अनडाउटेडली
1: भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं क्योंकि यहूदी मेन्युहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: वो अद्भुत है।
0: डेफिनेटली यहूदी मेन्युहिन साहब वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी
1: जी।
0: उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित राम नारायण जी, और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेनन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके साथ मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई
1: यहूदी मेनन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं।
0: बहुत बहुत आदर की बात है, एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी, उनको आदर मिलेगा और मैं वो आदर का भागीदार बनना चाहता हूँ आपके साथ।
1: जी जी, आइए सुनते हैं।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे बालू स्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया। इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं?
1: जयंत जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान मनीषी ऋषि जो भी कह लें उनके लिए कम हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली, उन्होंने इस बाजे को इज्जत

0: वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से, श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं।
1: जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
0: बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये पेश करिए आप।

0: साहब के वायलिन पर बजाए राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार, श्रोताओं संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये पहली प्रस्तुति, फिल्म का नाम है सुहागन। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत में अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, रचनाकार कैफ इरफानी है, संगीत फिर से मदन मोहन का और फिल्म का नाम है शेरू।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 呀？
1: 嗨
0: 嗨嗨嗨！
2: ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शराबी से। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, वक्त है एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल की बात।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: साहिब बहादुर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सारंगा फिल्म से। भरत व्यास के बोल थे, संगीत था सरदार मलिक का, और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का कम एक्सपर्ट।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं खयाम के संगीत से सजा ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें, फिल्म का नाम कभी कभी।

0: श्रोताओं, अब वक्त है हम है राही प्यार के कार्यक्रम में एक छोटी सी अंतराल का।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
9: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आओ प्यार करें, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उषा खन्ना के संगीत से सजा, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत सुनिए। ओपी नैयर के संगीत से सजा मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें।

आइए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। ये गीत हमने लिया है फिल्म कन्हैया से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में कन्हैया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत है हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के यहीं संपन्न हुआ।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में रिले होंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के

0: विदेशी व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के

0: प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी।

0: दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है, पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर IIT निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है, पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders.

0: सपनों के जहां से अब लौट आओ, हुई है सुबह अब जाग जाओ, चांद तारों को अब कहकर अलविदा, इस नई दिन की खुशियों में खो जाओ। जी हाँ, आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त कामिनी और मेरे साथ है
1: मीनाक्षी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और देखो आज कार्यक्रमों में क्या खास रहेगा, क्योंकि आज है ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, ग्रीन एंड गेट अवे गुरुवार का जो ये दिन है, इस दिन हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। उसमें सबसे पहले मॉर्निंग ब्रीफ में हम आप सभी को बताएंगे सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के बारे में।
1: बिल्कुल, और प्रमुख स्थानीय खबरें होंगी, T20 विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाएंगी।
0: इको टॉक में हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के बारे में,
1: और यात्रा संवाद में वेटलैंड सिटी पक्षी गांव लेकर चलेंगे आपको मीनार।
0: और अगर अवेयरनेस और जागरूकता की बातें करें तो हम कल और आज हल्दी घाटी युद्ध के 450 वर्ष की बातें करेंगे।
1: तो पहले शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ।

0: बिल्कुल, मौसम तो सुहाना हो गया है कामिनी, क्योंकि कल जो शाम को बारिश हुई है उसने वातावरण में ठंडक घोल दी है, है ना?
1: वाकई में, और इसी ठंडक ने हमको सारी बातों में ठंडक ला दी है।
0: और ये मौसम जो है उसने जो ये खेल का मौसम चल रहा है उसका मज़े को और भी बढ़ा दिया है ना। तो फीफा वर्ल्ड कप की बात करें सबसे पहले कामिनी, तो कल रात को 10:30 पर ग्रुप के का पुर्तगाल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो मैच हुआ उसमें 1-1 से जो है ड्रॉ रहा ये मैच। और उसके बाद जो मुकाबला हुआ इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया का, वो एर्लिंगटन में मैदान पे हुआ और 4-2 से ये जो है मैच का अंत हुआ, और कप्तान हैरी केन ने 2 गोल इसमें किए हैं। ग्रुप एल के मैच की बात है तो पहला ये इंग्लैंड और क्रोएशिया का भी ग्रुप एल का पहला मैच था। ग्रुप एल का दूसरा मैच घाना और पनामा के बीच हुआ सुबह 4:30 पर, और टोरंटो के स्टेडियम में ये मैच रहा। 1-0 से घाना की टीम जीती है। और अभी जो मैच चल रहा है ग्रुप के का उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच मैक्सिको सिटी में चल रहा है। और ग्रुप ए का जो रात को मैच होगा 9:30 पर वो होगा चेकिया और साउथ अफ्रीका के बीच एटलांटा में।
1: और हम अगर महिला T20 विश्व कप की बात करें तो महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को 95 से मात दी। भारत की ग्रुप एक में ये लगातार दूसरी जीत है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 209 बनाए, वहीं नीदरलैंड्स की टीम ने

0: 17.3 ओवर में 114 रन बनाकर सिमट गई और मंधाना लगातार दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच बनी। और साथ ही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत की लय कायम रखते हुए यहां आईसीसी टी20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। प्लेयर ऑफ द मैच एलिसा पेरी ने नाबाद 19 रन बनाए और 2 विकेट चटकाए। और आगे बात करें, कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के शतक से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में 170 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने वनडे में कुल 8वीं बार 400 प्लस का स्कोर बनाया। शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर अपना पहला वनडे शतक लगाया। उन्होंने 110 गेंदों में 22 चौकों और 2 छक्कों के साथ 154 रन बनाए।
1: क्या बात है। और देखो, वैसे जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, उसकी धूम तो पूरे दुनिया भर में चल रही है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना टॉप पर चल रही है, ग्रुप एल में इंग्लैंड और ग्रुप आई में नॉर्वे। और वैसे जो अभी हमने बताया कि उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच जो मैच खेला जा रहा है, तो 48 मिनट और 25 सेकंड का मैच हो चुका है और जिसमें उज्बेकिस्तान कोई गोल नहीं कर सकी है, लेकिन कोलंबिया ने 1 गोल ताक दिया है। देखते हैं मैच किसके पल्ले में जाता है।

0: कामिनी, इतिहास देखो इतनी आसानी से नहीं बनता, अनेक बलिदान कई त्याग करने पड़ते हैं। और भारत का इतिहास जितना समृद्ध और रोमांच से भरपूर है ना, वैसा किसी अन्य देश का नहीं। वैसे भारतवर्ष ने अनेक जुल्म अन्याय सहे, पर इस भूमि के वीर सपूतों ने अत्याचारियों के नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दिया, है ना?
1: बिल्कुल मीनाक्षी।
0: और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जो जयंती है, वो तो हम इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और कल के दिन की बात करें तो उदयपुर में हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया। महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, स्वाभिमान, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का गौरव गान हर ओर गूंजा। मुख्य आयोजन राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा के रूप में हुआ शहर के गांधी ग्राउंड में। और इसमें कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुए मेवाड़ के प्रबुद्ध जन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक, मुख्यमंत्री हमारे माननीय भजनलाल शर्मा भी। और इसमें आगंतुकों का हल्दी घाटी की माटी से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आयोजन में सिंगल यूज प्लास्टिक से इसे मुक्त रखा गया और गर्मी से बचाव के लिए पंडाल में पंखे, जल फुहार की व्यवस्था भी की गई और मिट्टी से कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी युद्ध का दृश्य उकेरा गया।
1: साथ ही विशेष पूजन और अर्चन भी हुए। महाराणा प्रताप के त्याग, स्वाभिमान, राष्ट्र निष्ठा और संघर्ष के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का आह्वान भी किया। फतेह मेमोरियल में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ अभिषेक व आरती कार्यक्रम भी मनाए गए। और महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह एवं महाराणा भोपाल सिंह की प्रतिमाओं का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक किया गया।
0: और शहर भर में देखो इस अवसर पर कई शोभा यात्राएं भी निकली और जगह जगह पुष्पांजलि से उनका स्वागत किया गया। संगोष्ठियां हुई, दुग्धाभिषेक भी हुआ, सम्मान समारोह भी हुए और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन इस अवसर पर हुए। कई समाजों ने, संगठनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप के जीवन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, भामाशाहों और सप्तऋषि कार्यक्रम के सहयोगियों को महाराणा प्रताप सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया।
1: हाथीपुल मस्जिद के नीचे शोभा यात्रा का गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया तथा राहगीरों को छाछ भी वितरित की गई। चेतक सर्कल पर भी पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया।
0: तो देखो आज जो है वो 18 जून का दिन है। भारतीय इतिहास की वो तिथि जो केवल एक युद्ध का स्मरण नहीं कराती कामिनी, बल्कि त्याग, स्वाभिमान, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की गाथा सुनाती है। ये वो दिन है जब मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने इतिहास के पन्नों में वीरता की अमिट छाप छोड़ दी। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के रूप में लड़ा गया ये युद्ध केवल तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता और अधीनता, स्वाभिमान, सत्ता के बीच का निर्णायक संघर्ष था। वैसे वास्तव में कामिनी, हल्दी घाटी का जो युद्ध था महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद तो अगले 10 वर्षों में मेवाड़ में महाराणा ने स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी थी।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, यह युद्ध राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के हल्दीघाटी दर्रे में हुआ। मुगलों की विशाल सेना लगभग 28,000 थी, जबकि मेवाड़ की सेना लगभग 4,000 घुड़सवार और 3,000 भील योद्धा भी शामिल थे। यद्यपि युद्ध जो था वो अनिर्णायक माना जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगलों की विशाल सेना के सामने कभी भी हार नहीं मानी और पराक्रम का परिचय दिया।
0: इतिहास में इस युद्ध को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसमें महाराणा प्रताप की सेना कम होने के बावजूद उन्होंने मुगल सेना को जंगल और पहाड़ों में सिमटने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप की वो वीर सम्राट ही थे कामिनी, जिन्होंने अकबर को हिंदुस्तान का शहंशाह बनने से रोके रखा था और युद्ध से, षड्यंत्र से

लड़के से प्रताप को उन्होंने कई बार मारना चाहा, बंदी बनाना चाहा, लेकिन अकबर कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया और आज इस शौर्य और स्वाभिमान के संघर्ष के 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मेवाड़, वागड़ सहित पूरे राजस्थान में विजयोत्सव और राष्ट्रीय चेतना समारोह आयोजित किए गए। देखो, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला ये साक्षी है हल्दी घाटी की। आज भी ये ऐतिहासिक दिन, इसकी पीली मिट्टी मानो आज भी उन वीरों के रक्त से रंजित गौरवपूर्ण स्मृतियों को अपने भीतर संजय हुए है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मूल्य समझाया।

0: तो मीनाक्षी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मॉर्निंग ब्रीफ में एक बार फिर से जाते हैं और बात करते हैं गैस्ट्रोनॉमी दिवस की।
1: सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस आज है और पर्यावरण के अनुकूल खेती करने, स्थानीय सामग्री का उपयोग करने और भोजन की बर्बादी को कम करने वाली खाना पकाने की पारंपरिक विधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। और ये दिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित भी रखता है।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, और इस दिन का खास उद्देश्य है ताकि हम लोगों को जागरूक बना सकें जो ऐसा भोजन चुने जो स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करे और जिसका उत्पादन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए किया गया हो।
1: गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ सिर्फ अच्छा भोजन पकाना या खाना नहीं, बल्कि ये एक कला है जो प्रकृति, संस्कृति और स्वास्थ्य को जोड़ती है। और 2026 ने सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो वीक है वो मनाया जा रहा है 16 तारीख से 22 जून तक, और इसका विषय है सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज। ये दिन स्थानीय मौसमी फलों, सब्जियों, अनाजों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है जिससे परिवहन में होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। अपने आसपास के किसानों, छोटे उत्पादकों

बाजारों में मौसमी खाद्य सामग्री खरीदने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन कराया जाता है जिन्हें प्राकृतिक तरीके से उगाया गया हो, और ये दिन सिखाता है कि भोजन का सही प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि कचरा कम से कम फैले, और दुनिया भर की पारंपरिक और क्षेत्रीय पाक कलाओं को सहेजने का कार्य करता है आज का विशेष दिन। ऐसी कृषि और खाद्य प्रणालियों का समर्थन करता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखता है।

0: तो मीनाक्षी, कार्यक्रम यूं ही आगे जारी रहेगा, पर फिलहाल सवेरे के 9 बजने को है और ये वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत

0: धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और एआई आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: योजना 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए

0: सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बाद में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
1: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, एआई की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी उदयपुर। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं कामिनी और मेरे साथ
3: मीनाक्षी। तो पहले एक गीत और फिर कुछ और बातें।

0: तो मीनाक्षी कार्यक्रम तो हमने शुरू कर दिया है और हमको बहुत सारी बातें भी करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं। और हम कुछ ऐसी बातें करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण है तो हम हैं,
1: और इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो भी प्रयास हमें करने चाहिए ज़रूर करने चाहिए। और देखो, जैसे कल के आयोजन की भी हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे सिंगल यूज्ड जो प्लास्टिक है उससे मुक्त रखा गया था कार्यक्रम को। और वाकई में तो आज हम ऐसे ही प्लास्टिक की वस्तुओं की बात करेंगे जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिन्हें कहते हैं। इन्हें नष्ट होने में कामिनी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाती हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में क्योंकि इतना टाइम लगता है, इसे वैज्ञानिक रूप से रिसाइकलिंग कर यानी कि पिघला कर नए उत्पाद में या तो कन्वर्ट किया जाता है या रीप्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे कि सड़क निर्माण में उपयोग करते हैं, कटे फटे प्लास्टिक को डामर के साथ मिलाकर मजबूत और वाटरप्रूफ सड़कें बनाने में काम में लिया जाता है, या भस्मीकरण किया जाता है यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊंचे तापमान पर इसको जलाया जाता है और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा का उपयोग है वो बिजली बनाने में उसको काम में लिया जाता है। ऐसे ही नष्ट करते हैं वरना ये नष्ट नहीं होती।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति का अर्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य और वन्य जीवों को इसके घातक प्रदूषण से बचाना है, जिसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लागू किया गया है और जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। और इससे हम मुक्ति कैसे पाएं मीनाक्षी? सबसे पहले हमें जो हम कपड़े जो जूट के थैले हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं इनको हम अगर इस्तेमाल में लेंगे और इनसे जो आगे जो तक परिणाम आते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं।
1: हाँ, क्योंकि ये उड़ के कहीं भी चली जाती हैं। अगर इनमें हम भोजन की सामग्री डाल के फेंकते हैं तो हमारे जो निर्जीव पशु हैं, बेजुबान पशु हैं, वो इन्हें खाकर उनकी जान को आ जाती है। और पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों की जगह तांबे, स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे जो

0: उद्यान है, अभयारण्य है, वहाँ पर ये प्रयास शुरू भी किए गए हैं कि वहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं उनको कांच की बोतलें दी जा रही हैं पीने के पानी के लिए, और वाकई में इससे पर्यावरण को हम संरक्षित कर पाएंगे। इको फ्रेंडली विकल्प हम चुन सकते हैं। शादियां और पार्टियों में प्लास्टिक की प्लेट, चम्मचों की जगह पत्तल, कुल्हड़ या लकड़ी से बने कटलरी का उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी कि कटलरी में अगर आप चाय कॉफी में कुल्हड़ का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टील के बर्तन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ बांस या स्टील के चम्मच भी आप रख सकते हैं। साथ ही गिफ्ट पैकिंग के जो तरीके हैं उसको बदलेंगे तो भी हमारे जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है उस हम मुक्ति पा सकते हैं। उपहार देने के लिए जो प्लास्टिक की पन्नियां होती है ना, उसे हम हटा करके साधारण जो कागज होते हैं या फिर कपड़े, जूट रैप, इनके जो रैपर होते हैं उनका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: और अब तो देखो कई जगह प्लास्टिक की बजाय जो टूथब्रश है वो भी बैंबू से बनाए जा रहे हैं। घर पर प्लास्टिक को कभी भी हमें आग लगा कर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो इससे जहरीली गैसें हैं वो निकलती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सड़क पर इधर उधर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए प्लास्टिक।

0: कुल्हड़ का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टील के बर्तन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ बांस या स्टील के चम्मच भी आप रख सकते हैं। साथ ही गिफ्ट पैकिंग के जो तरीके हैं उसको बदलेंगे तो भी हमारे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। उपहार देने के लिए जो प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं ना, उसे हम हटा करके साधारण जो कागज़ होते हैं या फिर कपड़े, जूट रैप, इनके जो रैपर होते हैं उनका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब तो देखो कई जगह प्लास्टिक की बजाय जो टूथब्रश है वो भी बैम्बू से बनाए जा रहे हैं। घर पर प्लास्टिक को कभी भी हमें आग लगा कर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो इससे जहरीली गैसें हैं वो निकलती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सड़क पर इधर उधर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए प्लास्टिक की चीज़ों को। घर से निकलने वाले कचरे को हमेशा सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग करना चाहिए, ताकि घरेलू स्तर पर इसे जो है हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सके ताकि ये रिसाइकलिंग केंद्र तक पहुंच सके।
0: बिल्कुल, सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करके हमें न केवल प्रकृति को बचा सकते हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य और भावी पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं, जागरूकता कैसे बढ़ाएं, इन सभी बातों पर भी बात करें।

0: मीनाक्षी, कार्यक्रम में एक बहुत ही खास बातचीत करना रह गया है, वो है यात्रा संवाद। और यात्रा मतलब ट्रैवल टॉक हम ना करें तो क्या कहने,
1: मौसम सुहाना भी हुआ है तो देखो ट्रैवलिंग की बात तो आएगी ही।
0: तो ट्रैवलिंग की जब बात कर रहे हैं हम, तो पास के जो पर्यटन स्थल हैं उसमें आज हमने शामिल किया है मीनार को। मीनार जिसे आधिकारिक तौर पर रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक जीवंत गांव है। राजस्थान के पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध इसकी दो झीलें ब्रह्मा तालाब और धन तालाब, जहाँ हर सर्दियों में 150 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का घर होती है, जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो और पेलिकन शामिल हैं।
1: बिल्कुल, बार हेडेड गूज, पेटेंट स्टार्क, कॉमन चील, नॉर्दर्न शोवेलर, ये भी जो है बहुत यहाँ पाए जाते हैं। यह सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना है। ये गांव चार भव्य मंदिरों से सुशोभित है, जो नागरा शैली की वास्तुकला की एक आकर्षक कहानी बयां करते हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, ये जीवंत वास्तु शिल्प कृतियां हैं, जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और यहाँ के लोगों की अद्भुत शिल्पकारी की झलक पेश करते हैं। मीनार की संस्कृति का धड़कता दिल गैर नृत्य है। रक्षाबंधन के बाद होने वाले 40 दिनों के गौरी उत्सव के दौरान मीनार वास्तव में जीवंत हो उठता है। अक्टूबर में नवरात्रि के दौरान मीनार में भव्य रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। मीनार की बात करते हैं तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता भी प्राप्त है, और सम्मान इन निर्मल क्षेत्रों में फलते फूलते समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रतीक है। आज ये झीलें 150 से अधिक पशी पक्षियों के विविध समुदाय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मछलियों और सरीसृपों को भी आश्रय प्रदान करती हैं, जिससे इसे प्रकृति प्रेमियों के स्वर्ग का प्रतिष्ठित खिताब भी प्राप्त हुआ है।
0: हाँ मीनाक्षी, और पक्षी अवलोकन की अगर यहाँ बात करें तो यह गांव आधिकारिक तौर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। स्थानीय संरक्षणवादी, जिन्हें पक्षी मित्र के नाम से जाना जाता है, आर्द्र भूमि की रक्षा करते हैं, जिससे सैंड पाइपर, मार्श हैरियर और पेलिकन जैसे विविध पक्षी जीवन को देखने में जो अवसर है वो शानदार अवसर यहाँ मिलता है देखने का।
1: और कामिनी, वन विभाग हर साल जनवरी फरवरी में पक्षी महोत्सव का यहाँ पर आयोजन करता है, जो कि आकाश में इंद्रधनुषी रंग बिखेर देता है। और इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता, प्रतिष्ठित अधिकारी एकत्रित होते हैं, जहाँ प्रकृति की गोद में प्रत्येक पक्षी को एक अनमोल अभयारण्य प्राप्त होता है। तो जरूर जाइएगा मीनार जब आएगा सीजन, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच। तो वेटलैंड सिटी की हमने बात की और अब इजाजत लेने का समय भी हो गया है। तो कामिनी, आज श्रोताओं को बता दें, आज कार्यक्रम में मैं थी मीनाक्षी
0: और मैं थी कामिनी,
1: और सुनिए ये गीत और दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एफएम रेडियो लेक सिटी की आज की लोकल विंडो में आप सभी का स्वागत। आज है मीनाक्षी के साथ। दोस्तों, जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना सुनी ही लगती है। शायद इसीलिए किसी के जैसा बनना जरूरी नहीं, जरूरी तो है जीवन में किसी के लिए और किसी के साथ होना। वैसे हमारा आपका साथ तो हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा, तो चलिए चलते हैं साथ साथ।

तो बस यूं ही चलते चलिए एफएम रेडियो लेक सिटी के साथ। और अब आपको बता देते हैं कि थर्सडे स्पेशल में आज की और खास है। तो आज 10 बजे कुछ गुजरे जमाने की बातें होंगी वो भूली दास्तां में, 11 बजे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम होगा तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। फिलहाल एंजॉय कीजिए गुड मॉर्निंग लेक सिटी का ये अगला म्यूजिक ट्रैक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों, अक्सर लोग ऑटिस्टिक प्राइड डे और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य लोगों को ऑटिज्म के लक्षणों और चुनौतियों के बारे में शिक्षित करना है। वहीं 18 जून का दिन ऑटिस्टिक समुदाय के सदस्यों के गौरव, आत्मसम्मान और स्वीकृति पर केंद्रित होता है, यानी कि आज है वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। ये दिन ऑटिस्टिक लोगों की विशेषताओं, उनकी खूबियों और समाज में उनके योगदान का जश्न मनाने का एक खास अवसर है। ये दिन इस बात को मान्यता देता है कि ऑटिज्म कोई बीमारी या ठीक करने योग्य दोष नहीं है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क की विविधता का एक सामान्य हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें समाज में बराबरी का हक

और सम्मान दिलाना है। और देखो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी काफ़ी ऐसी फिल्में भी बनाई हैं जिनमें इस तरह की कई रोगों के जिक्र हैं, किरदार हैं। और ऑटिस्टिक बीमारी को लेकर दो खास फिल्में बनी हैं, मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें अजय देवगन ने मुख्य भूमिका निभाई, और बर्फी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने ऑटिज्म से पीड़ित झिलमिल नामक एक यंग ऑटिस्टिक वुमेन का जो किरदार है वो बखूबी निभाया और काफ़ी उन्हें सराहना भी मिली। तो चलिए इसी फिल्म का गीत अब आप तक पहुँचाते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन

0: हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। लोगों को अपनी दिनचर्या से ब्रेक लेकर, क्योंकि खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच समय बिताने और परिवार दोस्तों के साथ भोजन का आनंद लेने के लिए ये दिन प्रोत्साहित करता है। हम जब अपनों के साथ प्रकृति से जुड़कर मानसिक तनाव को कम कर पाते हैं ना, तो आगे के काम और भी अच्छे से कर पाते हैं। अपनों के साथ खुशनुमा पल बिताकर नई ऊर्जा से भर जाते हैं। किसी स्थानीय पार्क, झील या बगीचे में परिवार दोस्तों के साथ आज के दिन घूमने जाएं, पिकनिक में सैंडविच, घर का बना भोजन लेकर जाएं, ताज़े फल, स्नैक्स, पेय पदार्थ भी साथ लेकर जाएं। समय बिताने के लिए बैडमिंटन, लूडो, फ्रिस्बी, कार्ड जैसे हल्के फुल्के खेल खेलें, कुछ चिट गेम्स भी तैयार कर सकते हैं, डमशिराज वगैरह खेल सकते हैं, और अंताक्षरी से तो माहौल को और भी हल्का और संगीतमय बनाया जा सकता है। पानी का स्थान हो तो सुरक्षित तरीके से स्विमिंग कर सकते हैं, पानी में बैठ कर भी एंजॉय कर सकते हैं। तब बदलने के लिए अगर आप कपड़े भी लेकर जा रहे हैं तो गीले कपड़े रखने के लिए वाटरप्रूफ बैग भी साथ लेकर जाएं, बेडशीट या चटाई, पानी भी अपने साथ रखें, रेगुलर मेडिसिन्स रखें, फर्स्ट एड बॉक्स हो, जहां भी जाएं वहां की जो प्रकृति है उसकी सुंदरता को किसी भी तरीके से ख़राब या दूषित नहीं करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और एक ख़ास बात और ध्यान रखने की होती है कि मोबाइल का यूज़ सिर्फ उन पिकनिक के लम्हों को कैद करने के लिए करें, ना कि उनमें खो जाए एक कोने में बैठकर। वैसे कई हिंदी फिल्मी गीतों में पिकनिक के माहौल को फ्रेम किया गया है। दोस्तों, हम है राही प्यार के, विवाह, हम साथ साथ हैं, दिल चाहता है, मनचली जैसी कई फिल्में ऐसी हैं। लेकिन अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं, ये है फिल्म अनोखा इंसान से।

तो बिल्कुल पिकनिक पर ज़रूर जाइएगा और आज के ख़ास दिन को एंजॉय कीजिएगा। वैसे आपको बता दें कि आज एक्टर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर और तमिल, तेलुगु, मलयालम और खासकर हिंदी फिल्मों के खास अभिनेता अरविंद स्वामी का आज जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और रोज़ा, बॉम्बे, सपने, सात रंग के सपने जैसी फिल्मों में आपने उन्हें देखा है, सराहा है, तो उन्हीं की फिल्म का गीत, गुड मॉर्निंग लेक सिटी का अंतिम गीत, बॉम्बे फिल्म से।

बिल्कुल दोस्तों, यही है हमारा अगला कार्यक्रम वो भूली दास्तां। और एक बार फिर आप सब हैं मीनाक्षी के साथ। और दोस्तों, आज हम क्या खास लेकर आए हैं बताएंगे ज़रूर। और आज कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्में हम लेकर आए हैं जो ये बताती हैं कि हिंदी फिल्म जगत में हमेशा कोई ना कोई प्रयोग होते रहे हैं, और ये प्रयोग जो हैं पुराने ज़माने से चले आते रहे। आपने देखा होगा कि पहले जब अभिनेत्रियाँ नहीं हुआ करती थीं तो हीरोइन का किरदार भी पुरुष हीरो या पुरुष जो चरित्र अभिनेता होते थे वो ही निभाया करते थे। और कुछ गीत या कुछ फिल्मों के सीन ऐसे हुआ करते थे और आज भी ऐसे होते हैं जिनमें जो हीरो है वो एक गेटअप, एक ख़ास फीमेल गेटअप में नज़र आते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला जो गीत आप सुनेंगे फिल्म ब्लफ मास्टर से, और इसमें जो हीरोइन की तरह नज़र आते हैं वो हैं शम्मी कपूर।

ये गीत आपने सुना 1963 की फिल्म ब्लफ मास्टर से, आवाज़ उषा मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम की, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के ये बोल थे। बेहतरीन लग रही थी इसमें शम्मी कपूर, बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं। और अगला जो गीत आप तक आ रहा है किस्मत फिल्म से, और इसमें विश्वजीत बेहद ही खूबसूरत अभिनेता, उस समय के चॉकलेटी बॉय, वो नज़र आएंगे बबीता के साथ, और बबीता मेल परिधान में है जबकि विश्वजीत फीमेल कैटअप में।

वो भूली दास्तां। और इसमें अगला गीत जिस फिल्म से है, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया। इसमें आईएस जौहर नजर आते हैं एक महिला के रूप में, और साथ में उनके हैं जीवन। सोनी कोमी की कंपोजिशन है और जीएल रावल का जो है शब्द रचना उनकी। पहली मुलाकात का वो पल आज भी याद है, वो मुस्कुराता चेहरा, उस पर जुल्फों का पहरा, मतवाली सी चाल, कुछ तो कर गई कमाल।

0: और अब आप सुनेंगे किशोर कुमार को। वैसे तो किशोर कुमार बहुत ही चुलबुले स्वभाव के रहे, हाफ टिकट और झुमरू जैसी फिल्मों में उन्होंने महिला किरदार निभाए हैं, और ये गीत प्राण के साथ।
1: हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

बहन ना, और तोरे नै ना, हाय हाय मीठे बहन ना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ये गीत है रफू चक्कर फिल्म से और इसमें महिला बने हैं गोफी पेंटल, पेंटल और ऋषि कपूर।

मोहम्मद रफ़ी और महेश कुमार की आवाज़ में सुनते हैं अगला गीत फिल्म हसीना मान जाएगी से, और इसमें नज़र आते हैं शशि कपूर।

ये एक फनी पैरोडी टाइप गीत आपने सुना, और अगला जो गीत है वो फिल्म मेरा फैसला से, और इसमें महिला के गेटअप में है संजय दत्त।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और अब वो गीत शायद जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा, लावारिस फिल्म का गीत। नजर आते हैं अमिताभ बच्चन।

वो भूली दास्तां आप एंजॉय कर रहे हैं और अब चाची 420 फिल्म का गीत सुनिए। और इस फिल्म में बेहद खूबसूरत चाची बनते हैं कमल हसन।

दोस्तों, फेमस कॉमेडियन रहे महमूद ने भी फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर निभाए हैं। हालांकि गीत कोई इसमें फिल्माया नहीं मिला हमें, लेकिन उनकी फिल्म लव इन टोक्यो का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस फिल्म में वो फीमेल गेटअप में नजर आए थे।

दोस्तों 1992 में एक फिल्म आई थी तहलका। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसमें जावेद जाफरी, नसीरुद्दीन शाह और आदित्य पंचोली तीनों ही कलाकार महिलाओं की वेशभूषा में नजर आते हैं। हालांकि जब उन पर ये फिल्म के सीन फिल्माए गए थे उसके बाद तो गीत आया था मेरी छतरी के नीचे आ जा, लेकिन हम आपको इस फिल्म का एक दूसरा ही गीत सुनवा रहे हैं।

समय समय पर दोस्तों कई फिल्में ऐसी आई जिनमें पुरुष कैरेक्टर्स ने फीमेल के गेटअप में प्रस्तुति दी और रोल निभाए, जैसे कि कई फिल्में ऐसी भी रहीं जिसमें रितेश देशमुख, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान भी नज़र आते हैं, साथ साथ श्रेयस तलपड़े, अनिल कपूर और आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन, इसके अलावा राजकुमार राव भी, अर्जुन कपूर भी नज़र आए हैं फीमेल गेटअप में। लेकिन अब वो भूली दास्ता का आखिरी गीत, और इसमें कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है और गीत फिल्माया गया आमिर खान पर।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: वंस अगेन वेलकम दोस्तों। सुबह के 11:01 हो चुका है और कार्यक्रम वो जिसमें शामिल होंगे आपके नाम, क्योंकि ये है तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। गीत प्ले होंगे हमारी पसंद के, और यदि आपको भी वो गीत पसंद आए तो कीजिएगा हमें व्हाट्सएप मैसेज 9462697568 नंबर पर। एक साथ बहुत सारे नाम भेजने से बचें ताकि कार्यक्रम की रोचकता और मिठास बनी रहे। तो नोट कीजिए आज की फिल्मों के नाम जिनके गीत पहुँचने वाले हैं आप तक। जैसे को तैसा, सौदागर, वीर जारा, ईश्वर, घुंगरू, सलामी, मैं ऐसा ही हूँ और तुम मेरे हो। तो सबसे पहले जो गीत आप तक पहुँच रहा है, फिल्म जैसे को तैसा, आवाज़ किशोर कुमार, आशा भोसले की।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म जैसो को तैसा, फिल्माया गया कामिनी कौशल जितेंद्र पर। सच में मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है।
1: माँ नहीं मिलती।
0: और अब पहुंचाते हैं आपको हमारे श्रोताओं के नाम, जिनके व्हाट्सएप हम तक पहुंच चुके हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आपने जो पहले मैसेज कर दिए थे तो वो हम शामिल नहीं करेंगे, गीत सुने और फिर मैसेज करें। तो अब शुरू करते हैं सिलसिला। तो सबसे पहले ये मैसेज पहुंचा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और यह है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अगला संदेश पहुंचा है उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण शांति वारी का, जगदीश चौक से सीमा वारी नाहर सिंह वारी का। बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक का हरियाणा झज्जर से हम तक संदेश पहुंच गया है। और ये हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, औशिका, आदित्य, अंजलि, ये धमधा ग्राम सुखरी कला से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इन्हीं के साथ हैं कोहका भिलाई से उत्तम सिंह, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदनी। अगला संदेश तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा का है, ये गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इन्हीं के साथ है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना। और अगला संदेश पहुंचा है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा का। छत्तीसगढ़ मदनपुर से ये हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश, डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस जी अंसारी और आसमा खातून। इसके बाद ये संदेश महाराष्ट्र यवतमाल से पहुंचा है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता का। अगला संदेश है सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल, सोपान, नारायण इंगले हैं साथ में इनके। और ये अगला संदेश कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक का है। किशन जी, जितेंद्र, नानालाल, सुनील, नरेश, गौरव, कारपेंटर, न्यू आर्चियो से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ हैं जगदीश जी, भैरूलाल जी, नानालाल, प्रकाश, जितेंद्र, आशीष, गौरव, कैलाशीबाई और प्रेम देवी लोहार परिवार सालेड़ा से हमें संदेश भेज रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब सामे राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से तहे दिल के शुक्रिया के साथ इनका मैसेज। मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाज नगर उदयपुर के हमारे रेगुलर श्रोता। और इसके बाद ये हैं इस गीत को पसंद करने वाले अधवेश शर्मा, अशोक, रोहित, सनम, ब्रिजेश, हीरा लाल, मुकेश, दिलमणि, श्री कृष्णा, बक्सर बिहार से। ये संदेश हमारे पास वापस आ चुका है, नाम पढ़ लिए थे हमने। ये पुराना आरटीओ ऑफिस से हैं प्रताप नगर उदयपुर से मनीष यादव, ममता और दर्शिल। एमबी कॉलेज कुमारों का भट्टा से मांगीलाल पूर्बिया, पुष्पा रानी पूर्बिया, गीत इन्हें पसंद आया। मोती चौहट्टा करजाली हाउस से माधवलाल सिल्ली। और ये हैं कुम्हारों का भट्टा से प्रजापति, जॉनी भाई कुल्लड़ वाले। अगले मैसेज की तरफ बढ़ें, ये हैं जिला मुरादाबाद ग्राम

कोल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, दिशानी और निमित आहूजा का भी संदेश हम तक पहुंच गया है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौटा और ये हैं सीटी दीवाना इनके साथ में। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक शेरी, वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर और चंद्रपुर महाराष्ट्र से मधुकर येले, कंचन नीलेश, बुद्ध विहार बाबली से मंगेश पानबुड़े, भानुदास जी और टेकड़ेवाड़ी नागपुर से सुशील येले, मनीषा येले। आगे नाम और भी बहुत सारे हम तक पहुँच गए हैं, लेकिन वक्त पहले गीत पहुंचाने का आप तक। और अगली जो फिल्म है वो मैं ऐसा ही हूँ फिल्म से है, और आप जानते ही हैं कि फादर्स डे बहुत ही नज़दीक है, तो ये सभी पिताओं के लिए

चलिए दोस्तों, अब पहुंचाते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले श्रोताओं के नाम आप तक। तो ये संदेश सुरेंद्र सोलंकी, भावना, प्रदीप, हर्ष, रानू, पार्थ और इनके समस्त सोलंकी परिवार हमें कर रहा है सेक्टर 11 उदयपुर से। इसके बाद गुड मॉर्निंग के साथ ये मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, गगलानी, जगमोहन, प्रजापति, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और ये है नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी इनके साथ में। अगला संदेश ये पहुंचा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखे लाल वर्मा का। रोशन लाल सालवी, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैत्विक और इनका पूरा सालवी परिवार ये मीरा कॉलेज उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार, भोपालगढ़, राजस्थान से व्हाट्सएप कर रहे हैं। अगला ये संदेश आया है हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल का। और अगला संदेश ये है नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार जावर, खुशनसीब, अब्दुल हक जावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर जावर और राजेंद्र कटारे। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े का भी व्हाट्सएप हमने शामिल कर लिया है। देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया और इनके छोटे से पोते अल कबीर का भी छत्तीसगढ़ से संदेश आया जो हमने शामिल किया। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिल्लू और मधुर नायक का संदेश आया है। और ये अगला व्हाट्सएप है ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, बेबी गरिमा और मनीष का, फाजिल का पंजाब से। कार्यक्रम का अगला संदेश जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष का। भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येंद्र चौहान, तरुणा, एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता, नव्या, श्री, नित्या, हम सभी को जैसे को तैसा मूवी का माँ नहीं मिलती गाना काफ़ी पसंद आया, धन्यवाद आपका। इसके बाद यह है छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी उज्जवल दास का संदेश। तराने हमारे व्हाट्सएप आपके में। अगला व्हाट्सएप ये है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता, प्रीति सिंह, रितु और संकल्प प्यारी गुड़िया वेदा का। इसके बाद अगला संदेश शीला परिहार का सोलंकिया की घाटी से, सोलंकियों की घाटी उदयपुर, अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से यह है माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा का। और अगला गीत के लिए ये फरमाइश, इन गीत हमने प्ले नहीं किया और इन्होंने

टगर फिल्म के गीत की फरमाइश भेज दी। ऐसा ना करें कृपया करके, जब गीत प्ले हो उसके बाद ही उसे पसंद करने के लिए आप अपना व्हाट्सएप टाइप करके भेजें। ये है भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। और अगला व्हाट्सएप है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। और ये है जगमाल सिंह जागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा समस्त जागला परिवार हनुमानगढ़ जंक्शन से। और उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती बघेल, ये छत्तीसगढ़ के ही श्रोता हैं।

शोभा समसजागला परिवार हनुमानगढ़ जंक्शन से, और उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती बघेल ये छत्तीसगढ़ के ही श्रोता हैं। बहुत इनको पहला गीत जो हमने प्ले किया पसंद आया। मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप शर्मा चिंतामणि की घाटी से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी का भी नेपानगर मध्य प्रदेश से हम तक संदेश पहुंच चुका है। फाजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु लाड़ी, विशाल शालिनी टीवानाशी का भी धन्यवाद के साथ संदेश आ गया है। इसके बाद उसी पहले गीत के लिए ही अभी तक व्हाट्सएप आ रहे हैं। वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का ये संदेश है। निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू का तेलीवाड़ा से, और ये है दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश छत्तीसगढ़ के श्रोता। इन्होंने फरमाइश लिख के भेज दी, कृपया ऐसा ना करें। ये है ग्राम पंजौनिया, जिला जानौर, जालौन, उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, आलोक केक। और ये अगला जो संदेश आया है बाड़मेर से है, बबलेश पवार, डैनी, मनीष का, रामदेवरा से दिनेश चौहान, और इन्हीं के साथ है जागरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और अगला संदेश ये छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र और इनका पूरा परिवार, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र, जय नारायण, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान का व्हाट्सएप, और चेटक सर्कल से मुकेश जिंगर, रेणु जिंगर का, प्रेमपुरी गोस्वामी, सेलू की बाड़ी से अजय जिंगर, प्रिंस, ये है कुलदीप सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के श्रोता, और ये हैं ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजत और नन्ना टप्पू। इसके बाद अगला संदेश है प्रेमपुरी गोस्वामी, हल्दी घाटी बलीचा, जिला राजसमंद से, इनके साथ हैं प्रियंका गोस्वामी, प्रद्युमन और प्रद्युमनपुरी, देवाली नीमच खेड़ा से, तारा गोस्वामी, चिट्टू मिट्टू और ये हैं नीमच खेड़ा से, धीरज गोस्वामी, मनीषा गोस्वामी भीलवाड़ा से, पंडित जी सहेलियों की बाड़ी के सामने, और ये हैं महेश राजानी, भावना राजानी, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी के श्रोता। सूरजपुर से अगला व्हाट्सएप आया है शास्त्राचार्य नैमिश व्यास, एडवोकेट ऐश्वर्या व्यास और लिटिल मास्टर जियांश व्यास का, और ये हैं जगदीश धाकड़, नैमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी, ये रतलाम एमपी से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। मनीष टेलर, बाबूलाल धाबाई का भी हम तक संदेश पहुंच गया है, और सबसे प्यारा कौन है गीत पसंद किया नो भोपालपुरा से, विनीता, राजीव माथुर, आभा माथुर, गुनगुन और भुवन ने। साथ ही ये संदेश आया है राजकुमार माथुर, स्मिता, निलय, अक्षिता, आलिंद माथुर, बोहरा गणेश जी के श्रोता हैं हमारे, और आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैनजी, सौरभ, सायना और निवान का भी व्हाट्सएप हम तक पहुंच गया है। इस गीत को पसंद किया है किशोर टेलर, कुसुम, कृतिका, भूमिका ठाडा, आर के कॉलोनी भीलवाड़ा के श्रोता ने, और ये है मध्य प्रदेश से विजय बहो महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। इसके बाद ये हैं नाथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और इसके बाद मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा, नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, ये झारखंड गिरिडीह के श्रोता हैं। शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतुरिया, काम्या, विकास खतुरिया, भानु और हिताक्ष खतुरिया का भी मैसेज आ गया है, और इन्हीं के साथ है सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से निकिता, कशिश और दीपक और मीर हसी जी क्यू भी इनके साथ में, और ये है हितेश सुहाल का आनंद विहार से, इन्हीं के साथ हैं कमल कुमार सुहाल का, श्रीमती कौशल्या सुहाल का, लाडली श्वेता। चलिए और भी मैसेज आ रहे हैं, नाम पढ़ेंगे लेकिन अगले गीत के बाद। ये है फिल्म सौदागर, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की।

बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, तो एक एक करके नाम पढ़ते हैं। ये हैं पोचिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू। अगला संदेश ये है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। उदयपुर कृष्णपुरा से ये हैं आयुष, गरिमा, राहुल, पायल, कृष्णा, इंदिरा, मयंक, भव्य राज, भवरीबाई और लेक सिटी श्रोता संघ के सदस्य भवरलाल जी नायक। और अगला व्हाट्सएप पहुंचा है बरकाना से, अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक का। इसके बाद वारियों की घाटी से ये हैं भावना रावत, नितिन रावत, जगदीश चौक से उमा वारी, साक्षी वारी का व्हाट्सएप। और ये हैं कमल, सोनिया, हरीश, मोनिका, भाविक, मीनाक्षी, आयुष, मंथन, प्रिशा, हर्षल, रौनिक जैन, तुलसी नगर भुवाना से। ये हैं नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इसके बाद ये हैं सरदारपुरा उदयपुर से अकीला, हिना, अर्श, अली, पिंकी, असरार अहमद, भाविका और पूरा सालोड़ा परिवार सरदारपुरा उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहा है। कुमारवाड़ा से है ललित कुमार प्रजापत।

भारत, और ये हैं अशोक कुमार, नामदेव, जाकिर हुसैन इनके साथ में। तराने हमारे व्हाट्सएप कार्यक्रम में ये अगला व्हाट्सएप है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय का। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। अगला संदेश जमशेदपुर से आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया का। इसके बाद ये हैं इंद्रोका जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली, गणेश चौक रातानाड़ा जोधपुर से ही नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी। अगला संदेश सहारनपुर से है सैयद मसरूफ, शाइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम आबिद का। इसके बाद ये बहुत सारे संदेश राजकुमार शर्मा, पुष्पा शर्मा, चंद्रशेखर भावसा, संगीता भावसा, कपिल, दामिनी, लविशा और ये है राहुल भावसार, दामिनी, हर्षल, कुसुम और इसके बाद ये है अनिल भावसार, भगवती जी इनके साथ में, पूजा मोह, इसके बाद है ओम प्रकाश भावसार, मधु और ये है निर्जन, प्राची, दीपेश, सुरभि और ये नमः। और आपने जितने भी नाम लिखे हैं कहीं पे भी बीच में कॉमा भी नहीं लगाया है, बहुत असुविधा हो रही है पढ़ने में। राजकुमार शर्मा, पुष्पा शर्मा और ये हैं चंद्रशेखर, इन्होंने वापस से नाम लिख दिए हैं, ऐसा ना करें। अगला संदेश पढ़ते हैं, ये हैं अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर, हिंडवगरी, सेक्टर 5 के, बिल्कुल दो नामों के साथ इन्होंने का व्हाट्सएप, आपका धन्यवाद। और ये हैं हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना, काजल, मालदा स्ट्रीट, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सारणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के श्रोता हैं ये। इसके बाद ये शुभ प्रभात के साथ सौदागर फिल्म की गीत को पसंद करते हुए संदेश आया है तरुणा झमक, पूर्विया, सोहन देवी, पूर्विया और ये हैं पूरव, लक्ष्मी, लक्ष्य राज, हाथीपोल उदयपुर के साथ, ये सभी हमने नाम शामिल किए। इसके बाद इसी गीत को पसंद किया है विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग, राहुल शर्मा, अक्षय, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशिता, भवर गौतम और ये हमारे धौली बावड़ी उदयपुर के श्रोता हैं। इसके बाद सौदागर फिल्म के गीत को भी पसंद किया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव ने, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत, मिथिल और प्रगति का प्रताप नगर उदयपुर से हम तक संदेश पहुंचा है। और ये हैं सदर बाजार जबलपुर मध्य प्रदेश से कमल सिंह बघेल, विमल सिंह, ज्योति और रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पवार, पिंकी मनस्वी, चैतन्या कार्तिकेय, प्रभात नगर, हिरणमगरी सेक्टर 5 के श्रोता है, इन्हें भी गीत पसंद आया है। कृष्णा कुमावत, मिट्टू झाला उदयपुर के ही श्रोता है, सौदागर फिल्म का गीत इन्हें पसंद आया। इसके बाद ये है मुकेश वैद्य सिसारमा से और मनन वेद, ईशानी, शीला भी इनके साथ में है और थैंक यू के साथ इनका संदेश हमने शामिल कर लिया है। ये है दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, हरियाणा के श्रोता। सौदागर फिल्म के गीत को ही पसंद किया है विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश, विनीत, पूनम, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड से इनका व्हाट्सएप आया है। इसके बाद कैलाश मार्ग से ये हैं लाला सोनी, मोहन कसारा और शेष सिंह राजपूत। बाबू भाई, भारती देवी, जवाहर नगर उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। आयुर्वेदिक चौराहे से हैं अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान। पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत और नक्ष रावत। एक संदेश और शामिल करते हैं फिर अगला गीत आप तक पहुंचाएंगे। जितेंद्र, मंजू मासी, पुष्पा, चिराग, मोनी न्यू भोपालपुरा से। देखिए अब हर इन्होंने नाम के साथ न्यू भोपालपुरा लिखा है, जबकि कितनी बार हम लोगों ने इस बात के लिए कहा है कि कृपया ऐसा ना करें, एक ही जगह से अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार जगह का नाम लिखें। निर्मला, मनीष जी, हेमंत जी, तारा भी हैं इनके साथ है, सोनिया, रोहित, प्रदीप और रीना, ये हैं डॉली, जमुनाबाई और रूपलाल जी, नन्ना मुन्ना युगु और मदन, मंजू, माहिर भी इन्हीं के साथ है। चलिए अब आप तक पहुंचाते हैं अगला गीत, फिल्म वीर जारा।

उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म वीर ज़ारा से, और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम अब आप तक पहुंचाते हैं। ये हैं भरत रेगर, डिंपल रेगर, प्रिंस गोकू रेगर कॉलोनी से हैं, और इन्हीं के साथ में हैं ये गुलाब रेगर, शांति रेगर भी। अगला ये संदेश आया है जयपुर से राजेंद्र अरुणावैद का, मुंबई से विनोद रंजना जी हैं, और हरिगढ़ से मनोज मनीषा जैन, संभाजी नगर से हैं संजय सपना जैन, उदयपुर से राजकुमार रेणु जैन। उदयपुर राजस्थान से अगला व्हाट्सएप आर मनोज का है, और इसके बाद ये हैं उदयपुर हिरण मगरी सेक्टर 5 से शांति नगर से घनश्याम लाल बड़ारिया, नानी बड़ारिया, नंदिनी पल्लवी और कुसुम और बाबू भैया। इसके बाद ये उदयपुर से हैं वीज़ारा फिल्म के गीत को पसंद करने वाले मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, एनाया टेलर, अक्सा इकरा।

मुस्तफ़ा कॉलोनी सलमबर के श्रोता है। इसके बाद मैडम जी सरफुद्दीन अंसारी वाला जी, पहले पहले मैसेज पढ़ा था या फेक नाम वाला है, ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आया। ये आपके, अच्छा इनके नामों से किसी और ने भी मैसेज कर दिया, पर अब आपके नाम तो हमने ले लिए हैं। तो ये है जय सियाराम, चेतन दीक्षित, भूपेश, हितांशी उदयपुर के श्रोता हैं। इसके बाद ये है कुदी जोधपुर से, रवीना खतूरिया, सावरा चंदेवानी, भरत चांदनी क्यू, और ये हैं जय सालवी, संतोष खतूरिया, यज्ञा सालवी, दूध तलई के ये हमारे श्रोता हैं। और इसके बाद संदेश आया रामचंद्र पंवार, तुलसी राम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश महेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया का उदयपुर से ही। आपके नाम एक बार शामिल हो जाएं उसके बाद आप वापस व्हाट्सएप ना करें। हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या है राजकोट से, और विरमगाम सिटी से हैं ये अजीता मेहरा, सुनीता। और इसके बाद जो संदेश आया है सज्जनगर उदयपुर से है, मुसरत जहां, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अरशद, मोहब्बत इरशाद, सोनू, अफरीन, मोना और राधा का। इसके बाद ये गांव हांडी खेड़ा सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा जी। इसके बाद वीर जारा फिल्म के गीत को ही पसंद किया है भरत जायसवाल, सोनी गरासिया, गांव मंडवा डूंगरपुर के श्रोता। सरगुज मेन पार्ट से हैं विनोद थापा, पूजा रानी, विजय थापा। छत्तीसगढ़ से जानवी डोमिन, यामिनी और रोहित डॉम। डोंडी लोहारा से फर्जी हरिशंकर बेलदार और फर्जू प्रभा रानी बेलदार, उमा राज और जगदीश राज का रायगढ़ से ही संदेश हम तक आया है। ये है कार्यक्रम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, और अगला जो तराना आप तक पहुँच रहा है ये है फिल्म का नाम तुम मेरे हो। आवाज अनुपमा देशपांडे के साथ उदित नारायण की। गीत पसंद आए तो व्हाट्सएप करिए 9462697568 पर।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: श्रोताओं आपके मैसेजेस, आपके नाम हम पढ़कर जरूर सुनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले गीत। आशा भोसले की आवाज में घुंघरू फिल्म का गीत।

आशा भोसले की आवाज़ है और नाम आपको बताते चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। ये है रामपुरा से नारायण सेन और इसके बाद अगला संदेश है इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डॉक्टर डब्लू राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया और ये है गोरैया चौक अम्बाला से संदीप हगोड़िया और राकेश, सरगुजा बक्सर से आर एस जीवली अंसारी। इसके बाद ये हैं पुराना तालाब डूमपुरा से वलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम अंसारी, असमा नाज और जेल रोड बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, फातिमा राज और शिल्पी राज। और इसके बाद ये लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य उदयपुर धानमंडी से परमानंद कुमावत, मंजू कुमावत, विकास मोनिका, लक्ष्य कुमावत, बेंगलोर से निखिलेश दीपिका रिधान कुमावत, बेंगलोर से ही वर्षा सुरेंद्र लावण्या कुमावत। और इसके बाद ये हैं किशन सोलंकी, कविता सोलंकी, हेमंत सोनी, ज्योति सोनी और कार्तिक आनंद विहार टेकरी उदयपुर के श्रोता हैं। इसके बाद ये हैं रामपुरा से सुधा रानी वैष्णव, अगला संदेश है नागानगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई और सैफान भाई का।

मॉर्निंग के साथ ये अगला संदेश सलमान अहमद टेलर, भरत भाई टेलर, छतरीवाला चौक, दिल्ली गेट, उदयपुर के श्रोता है। इसके बाद तुम मेरे हो गीत को पसंद किया है शांता, शुभम, अभिनव, किरण, कीर्ति, दिनेश शर्मा, कांजी का हाटा, उदयपुर के श्रोता है ये। और इसके बाद हीरालाल चौधरी, गजेंद्र, निर्मला, पूर्वी, प्रेक्षा और ये हैं प्रेक्षा चौधरी मठ मदरी मादरी से। और इसके बाद पुराना तालाब डुमराव से हैं, इनके नाम हमने ले लिए, इन्होंने दोबारा संदेश भेज दिए हैं। इसके बाद गांव खरगड़ा चौबीसा से हैं गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम, अंशिका, तमन्ना कांगड़ा, और नाम और बताते हैं।

हुड्डा इकबाल, शका साहब, शैलेंद्र पालीवाल, कालू जी मिस्त्री, हितैश मेघवाल, देव डुंगरी बाऊजी से लक्ष्मी नारायण जी सालवी, कालका माता रोड से धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार, मनीष कुमार, और ये हैं चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, शारदा, रॉबिन, विकास, भावेश चित्तौड़ा, सोनाली, ये हैं विनीता, कृतिका और दिया, प्रियांश, तनिष्का और तनिष्क। इसके बाद ये हैं ब्रजमोहन शर्मा, शारदा शर्मा, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, शिजी विहार, खेड़ा सर्कल, उदयपुर, सेक्टर 14 उदयपुर के श्रोता, यशवंत कुमार शर्मा, शकुंतला, चिंतामणि की घाटी उदयपुर के श्रोता। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप तक पहुंच रहा है।

राहुल शर्मा, योगेश शर्मा, योगी शर्मा, विक्रम शर्मा का अमल का काटा उदयपुर से हम तक संदेश आ गया है। राजकुमारी, विपिन गोस्वामी चंदनवड़ी प्रेमनगर के श्रोता हैं। गुलाब बाग उदयपुर से हैं। घनश्याम लाल, सत्यनारायण माली, वीरेंद्र सिंह और राठौर और इनके सभी दोस्त इनके साथ में हैं। इसके बाद ये हैं बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्ला, ये उन्होंने फिर से मैसेज कर दिया है। रमेश चंद ठाडा, मीना टेलर बेदला उदयपुर के ही श्रोता हैं। और इसके बाद इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है। शक्ति नगर उदयपुर से हैं संतोष खतूरिया, कामिया विकास ऐसा लग रहा है, ये भी नाम हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद यह घंटाघर से हरीश सोनी, मांगीलाल, दीपक कुमावत, नरेश जी पाहुजा, सुंदरलाल पूर्विया, नाहर सिंह, लाल जी सोनी।

अंतिम तीन संदेश और शामिल कर लेते हैं। उदयपुर वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत। भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री का ये संदेश है। रमेश टेलर, अंजू, मयंक, तनिषा, लक्षिता टेलर परिवार इनका गारियावास रोड उदयपुर से व्हाट्सएप कर रहा है। और करजाली हाउस से हरीश सोनी, पवन सोनी, चंद्र प्रकाश सोनी, त्रिलोक सुंदरलाल जी पूर्विया, इन्हें भी गीत पसंद आया है। और सभी श्रोताओं का शुक्रिया, आभार हमें संदेश भेजने के लिए। और ये गीत सुनिए और फिलहाल मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: से FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 12 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। उसके बाद 12:05 पर जुड़ेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के साथ और सुनिएगा वहाँ के कार्यक्रम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में 2रे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं? डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफ़ी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताज़ी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे व्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे।

ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया, जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया, यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं, जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है, लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है, और शिकारा की जो धीमी गति है, और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं, और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद, और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य, संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य, सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार, तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ, तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो, स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा। इस बारे हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी या पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहाँ गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांसा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहरा

में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने अब सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। मांझी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से गिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ। क्या बात है, थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक सिर्फ पुल, एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ, चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी? याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर भेंट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है। आदमी कितना ही हताश परेशान हो, उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की

और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है। क्यास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये गाना जो अभी आप सुना रहे हैं वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि परदेसियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के

बी से एसएल वर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुनीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है, सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं, एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी हुई है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज़ की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई हैं, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज़ नौका के द्वारा सफ़र होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति

अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को

0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हार्ट

0: बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे

0: मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा

0: के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ें लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम 2 दिल।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार, और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे जो त्योहार होते थे तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से उस संगीत से जो लोक संगीत था वहाँ का उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज़ रच बस जाती है ना तो जब आप उस चीज़ को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज़ निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपये की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी। यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के ज़माने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की

0: और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी
0: और वो आकाश जी ए श्रेणी की कलाकार
1: थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। हाँ। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो ज़रूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़े से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज़ खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज़ को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज़्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, दरअसल ये वो

0: वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं, तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज
1: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे, तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे फोटो मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना, तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
1: चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है, इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली

0: है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या ख़रीदना है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीज़ें दे रखी हैं कि वो क्या चीज़ है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोल कर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो ज़रूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज़्यादा हम जा सकें बाहर वहाँ से खरीदें।
0: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: दीका
1: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था खैर कोई बात नहीं है अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए
7: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता त्योहारों का समय जब होता है ना जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो तो
6: बिल्कुल
7: सोच समझ कर ही
6: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं ऑनलाइन मंगानी वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए
7: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज़ के कपड़े खराब क्वालिटी उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएँ यानी रिव्यूज़ जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियाँ हैं इन सब चीज़ों को एक बार जाँच लेना चाहिए केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा
6: बिल्कुल और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया
7: जी

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है, शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी, कुछ कपड़े भी जिस साइज़ के मंगवाए थे उसे साइज़ में आए ही नहीं, जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी, कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा, मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं, और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और वाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें।

0: और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेती हैं।
1: देखिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें खराब भी आती हैं,
0: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
1: जो इनको कभी पछतावा हो। और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
0: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के पांचवें गुरु माने जाते हैं और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएँ देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है और लंगर यानी कि जो भोजन प्रसाद होता है उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल। और लंगर का खाना चंचल जी इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता वो प्रसाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
0: गीत सुन लेते
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जिसमें ये शकील अपना जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था। एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
4: है, ये तो है,
3: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल।
3: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
4: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
3: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
4: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए, या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
3: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी

0: चाहिए, जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट लें और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत,

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इसके 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाना?
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

0: नहीं, पसंद नहीं है मेरे को।
1: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी

0: गर्मी भी है तो जून का महीने चले गर्मी भी है, लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी
1: 48
0: नॉर्मल सी लगती
1: जी
0: है।
1: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
0: आपको सबसे मान
1: वो,
0: जी आपको पता है ये पहलगाम
1: हाँ,
0: कश्मीर में पड़ता,
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के
0: ठंडा
1: मौसम
0: पानी।
1: में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: अच्छा हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967-68 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: नहीं
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाह,
1: वाल रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: हाँ, मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी।
1: दिक्कत होती थी, हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समान, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी तो हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेक। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी जी दो लाइन बोलेंगे।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: है फिर तो।
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम पीली पे लगा, मतलब उसमें लगाते
0: जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही है, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे।
0: हाँ।
1: लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल,
0: आजाद
1: बिल्कुल।
0: रखना भी चाहिए। तो आपका तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंदर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जो दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर
1: बिल्कुल,
0: लगता है ना।
1: मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है तो।
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म

0: में, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर?
0: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठाकर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपनी बेटी को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे, हम आम खाने के लिए।
0: जी और

0: अग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात है
0: आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़
1: जी।
0: पौधा लगाया है,
1: मैं
0: आपकी
1: अपने
0: आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ जी।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियां होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहां पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहां पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे। फिल्म
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है, गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और जैसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए

0: छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
1: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
0: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
1: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाए जा सकते हैं ना अगर आप बागवानी करती हैं तो।
0: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में हैं तो घर में जैसे कि गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि खन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
1: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
0: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
1: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
0: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
1: हुआ करता था,
0: दादी लोग हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना उस टाइप का था,
1: चक्की जात वगैरह चक्री है ना।
0: जी जी
1: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
0: जी जी जी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: से?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और इसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी पिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना, ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है, तो घर में जैसे कि गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि ढाकन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए, खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का यही गाना। मैं

FM 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। युववाणी कार्यक्रम के बाद शाम 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम झुमको। युववाणी कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: प्रेरणा, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा एडवाइस कौन देता है?
1: ये भी कोई पूछने वाली बात है? मम्मा, खाना खा लिया, पानी पी लिया, फोन कम चलाओ, जल्दी सो जाओ, सबसे ज्यादा फिक्र वही करती है।
0: सही कहा, और बचपन में तो ऐसा लगता था कि जैसे आधी दुनिया की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारी मम्मी के ही पास है। जैसे कमजोरी लग रही है,
1: फल खाओ,
0: थक गए हो,
1: आराम करो,
0: पढ़ाई नहीं हो रही,
1: फोन रख दो। और सबसे मजेदार बात ये है कि बड़े होने के बाद समझ आता है कि उनमें से बहुत सी बातें सच भी थी, क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही आगे बढ़ जाए, एक बात नहीं बदलती, अगर इंसान स्वस्थ नहीं है तो बाकी चीजों का मजा भी अधूरा है।
0: और शायद इसी वजह से आज दुनिया सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और नई टेक्नोलॉजीज की ही बात नहीं करती, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य की भी बात करती है।
1: लेकिन आज का सफर सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं होने वाला है। आज हम मिलेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने बर्फीले इलाकों में इतिहास रचा, ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने शब्दों से दुनिया को प्रभावित किया, और ऐसे युवाओं से जिन्होंने एक आइडिया को स्टार्टअप में बदल दिया।
0: मतलब आज कहीं फ्यूचर की बात होगी, कहीं एडवेंचर की, कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की, और कहीं उन लोगों की जिनकी कहानियां ये साबित करती है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं, बड़े इरादों से शुरू होते हैं।
1: तो अगले कुछ मिनटों तक बस हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की बातचीत में कुछ नए विचार होंगे, कुछ प्रेरणा

0: लाइक किससे होंगे और कुछ ऐसे पड़ाव भी आएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे।
1: जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे प्रेरणा और आप सुन रहे हैं युववाणी। तो चलिए शुरू करते हैं।

0: प्रेरणा, एक बात बताओ कि अगर किसी बच्चे को रोज खाना मिल रहा हो तो क्या हम मान ले कि वो पूरी तरह से हेल्दी भी है?
1: पहली नजर में तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे, लेकिन असल में इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेट भर जाना और शरीर को सही पोषण मिलना दोनों बातें अलग है।
0: और शायद यही वजह है कि हम माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मामला सिर्फ भूख का नहीं होता बल्कि न्यूट्रिशन का होता है। कई बार बच्चा खाना तो खा रहा होता है लेकिन उसे वो पोषण तत्व नहीं मिल रहे होते जिसकी उसके शरीर को और उसके दिमाग को विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: और जिनमें यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भी है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुपोषण सिर्फ गरीब या भूखे लोगों की समस्या है, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि माल न्यूट्रिशन कई रूपों में दिखाई दे सकता है। कम वजन होना, उम्र के अनुसार ग्रोथ ना होना, शरीर में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की कमी होना, और कई बार अनहेल्दी फूड की वजह से बढ़ती ओबेसिटी भी इसका हिस्सा हो सकती है।
0: यानी एक तरफ एक बच्चा है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो रोज जंक फूड को खा रहा है और उसे सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दोनों परिस्थितियाँ अलग है लेकिन दोनों में ही हेल्थ की एक चुनौती है।
1: जिनमें अब जब हम बात करते हैं इंडिया 2047 की, तो अक्सर बुलेट ट्रेन, एआई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज और ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी जैसी हमें बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक सवाल हमारे पास यह भी है कि इन सब का फायदा किसे मिलेगा?
0: बिल्कुल, लोगों को। और लोग ही अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो विकास की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि 2047 का

0: भारत आज के बच्चों और युवाओं के हाथों से ही बनेगा, और आज का बच्चा जो है वो स्कूल में बैठा है, वही कल साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा और शायद देश की कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा।
1: और इसीलिए न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इशू नहीं, नेशन बिल्डिंग का इशू भी है, क्योंकि एक हेल्दी चाइल्ड ही फ्यूचर में प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकता है।
0: प्रेरणा, एक बात और, रिसर्च भी बताती है कि न्यूट्रिशन और लर्निंग का गहरा संबंध है। अगर बच्चे को सही पोषण मिलता है तो अक्सर उसके कंसंट्रेशन, मेमोरी और ओवरऑल लर्निंग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मिड डे मील जैसी योजनाएं सिर्फ भोजन देने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए भी है।
0: लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शुरुआत जो है वो अपने ही घर से होती है, क्योंकि हेल्दी हैबिट्स जो है वो किसी ऐप से नहीं, वो एक फैमिली से आती है।
1: बिल्कुल सही कहा। अगर घर में सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क और बैलेंस मील की आदत होगी तो उसका असर हमें लंबे समय तक दिखाई देगा। और अच्छी बात यह है कि हेल्दी फूड हमेशा एक्सपेंसिव फूड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स भी न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं।
0: लेकिन आज की जनरेशन के सामने एक नया चैलेंज भी है। पहले चिंता भोजन की कमी थी और आज कई बार चिंता फूड चॉइसेस की भी है।
1: बिल्कुल, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज स्नैक्स और फास्ट फूड कल्चर ने लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक बदल दिया है। और अब हम ऐसा कह सकते हैं कि कई बार खाना पर्याप्त होता है, लेकिन हमारे उस फूड में फूड न्यूट्रिशन जो है वो नहीं होता।
0: और शायद यही वजह है कि आज हेल्थ एक्सपर्ट डाइटिंग से ज़्यादा बैलेंस्ड ईटिंग पर जोर देते हैं।
1: बिल्कुल, अगर हम 2047 के भारत की कल्पना करें तो ऐसा भारत जहाँ हर बच्चे को सही पोषण मिले, जहाँ एनीमिया और ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो, जहाँ पेरेंट्स न्यूट्रिशन के महत्व को समझे और जहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल एक आदत बन जाए।
0: और अच्छी बात यह है कि इस दिशा में लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। पोषण अभियान, अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: तो इंडिया एड 2047 सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमी का सपना नहीं है, ये हेल्दी सोसाइटी का भी सपना है।
0: क्योंकि विकसित भारत की असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, बल्कि स्वस्थ, समक्ष और आत्मविश्वासी नागरिक होंगे।
1: और जब हर बच्चे को सही पोषण मिलेगा तभी हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने का अवसर भी मिलेगा।
0: और शायद यही है विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ और बेटर फ्यूचर।

0: प्रेरणा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक व्यक्ति ने दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे कठिन और लगभग असंभव माने जाने वाले इलाके में पहुंचकर इतिहास रच दिया, और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों को शब्दों में बदलकर लाखों लोगों को प्रभावित किया, तो शायद दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग अलग लगेगी।
1: बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों में एक चीज कॉमन थी, और वो थी अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। एक ने बर्फीले रास्तों को जीतकर दुनिया को चौंकाया और दूसरे ने अपनी लेखनी से लोगों की सोच को प्रभावित किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरर रोल्ड एमिनसन की, और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो हैं महान लेखक मैक्सिम गॉर्की।
0: एमिनसन का जन्म 16 जुलाई 1872 को बॉर्ज ऑस्टफोर्ड नॉर्वे में हुआ था। बचपन से ही उन्हें यात्राओं, नक्शों और खोज अभियानों में रुचि थी, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि उनकी माँ चाहती थी कि वे एक डॉक्टर बने।
1: लेकिन कई महान कहानियाँ की तरह ही यहाँ भी दिल ने अपना रास्ता चुन लिया। माँ के निधन के बाद एमिनसन ने चिकित्सा की पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन की दुनिया में उतर गए, और शायद यही फैसला इतिहास बनाने वाला साबित हुआ।
0: उस दौर में पृथ्वी के कई हिस्से ऐसे थे जहां इंसान का पहुंचना आसान नहीं था। आर्टिक और अंटार्कटिक क्षेत्र रहस्यों से भरे हुए थे, बर्फ, तेज हवाएं, बेहद कम तापमान और जानलेवा परिस्थितियां। इस सब के बीच यात्रा करना आज भी कठिन है, तो सोचिए कि 100 साल पहले वो कितना मुश्किल रहा होगा।
1: और यहीं से शुरू हुआ एमिनसन का असाधारण सफर। उन्होंने कई आर्कटिक एक्सपेडिशंस में हिस्सा लिया और धीरे धीरे पोलर एक्सप्लोरेशन के सबसे बड़े नामों में वे शामिल हो गए। लेकिन जिस उपलब्धि ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, वो थी साउथ पोल की यात्रा।
0: 14 दिसंबर 1911 ये वो तारीख है जिसे एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन एमिनसन और उनकी टीम दुनिया में पहली बार साउथ पोल तक पहुंचने में सफल हुई।
1: और खास बात ये है कि उस समय एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट भी साउथ पोल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया की नजरें दोनों अभियानों पर थी, लेकिन एमिनसन की प्लानिंग, प्रिपरेशन और नेविगेशन इतनी सटीक थी कि वे सबसे पहले साउथ पोल पहुंचे।
0: उनकी सफलता का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने जो है स्थानीय परिस्थितियों को समझा। उन्होंने डॉक स्लेजेस का इस्तेमाल

0: किया, मार्क की एडवांस प्लानिंग करी और हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान दिया। यानी सिर्फ साहस नहीं, रणनीति में भी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे।
1: बाद में उन्होंने एविएशन और पोलर फ्लाइट्स के क्षेत्र में भी काम किया। 1926 में वे उस एक्सपीडिशन का हिस्सा बने जिसे नॉर्थ पोल के ऊपर से सफल उड़ान भरने वालों में गिना जाता है।
0: दुर्भाग्य से 1928 में एक रेस्क्यू मिशन के दौरान उनका विमान लापता हो गया। 18 जून 1928 के बाद उनका कोई निश्चित पता नहीं चल पाया और माना जाता है कि उसी दौरान उनका निधन हो गया। लेकिन एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में उनका नाम आज भी सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाता है।
1: और दोस्तों अब बात करते हैं मैक्सिम गोर्की की। दोस्तों उनका वास्तविक नाम था एलेक्सी मैक्सिमोविच पेशकोव। उनका जन्म 28 मार्च 1868 को निजनी नोवगोरोड रशिया में हुआ था।
0: और उनकी शुरुआती जिंदगी किसी आसान कहानी जैसी नहीं थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। गरीबी, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में उनका बचपन बीतता चला गया।
1: उन्होंने बचपन में कई तरह के काम किए, कभी मजदूरी की, कभी छोटे मोटे काम किए और जीवन के संघर्षों को बहुत करीब से देखा। शायद यही अनुभव आगे चलकर उनकी लेखनी की ताकत बना।
0: उन्होंने अपने लिए गोर्की नाम चुना। रूस भाषा में गोर्की का अर्थ होता है बिटर, बिटर यानी कड़वा, और ये नाम उनकी शुरुआती जिंदगी के संघर्षों को भी दर्शाता था।
1: धीरे धीरे उनकी कहानियां और लेख लोगों तक पहुंचने लगे। उनकी रचनाओं में आम लोगों का जीवन, गरीबी, मेहनत और सामाजिक वास्तविकताएं दिखने लगी। इसी वजह से लोग उनसे आसानी से जुड़ पाते थे।
0: उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मदर, माँ नाम बहुत ही प्रसिद्धि से लिया जाता है। इस उपन्यास को विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिना जाता है। इसके अलावा उनकी आत्मकथा पुस्तकों चाइल्डहुड इन द वर्ल्ड और माय यूनिवर्सिटीज को भी काफी सहारा गया।
1: और शायद यही वजह है कि गोर्की को रशियन लिटरेचर का सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिना जाता है। उनकी लेखनी ने सिर्फ साहित्य को नहीं, समाज और राजनीति की चर्चाओं को भी प्रभावित किया।
0: 1936 में उनका निधन हुआ, लेकिन आज भी दुनिया भर के साहित्य प्रेमी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। और यही किसी लेखक की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उसके शब्द उसके जीवन के लंबे समय तक जीवित रहते हैं।
1: और अगर गौर करें तो एम्सन और गोर्की की दुनिया बहुत अलग थी। एक बर्फीले ध्रुवों में इतिहास बना रहे थे और दूसरे किताबों की दुनिया में।
0: लेकिन दोनों में एक समानता थी, दोनों ने कठिन रास्ते चुने, संघर्षों का सामना किया और अपने अपने क्षेत्र में एक ऐसी पहचान बनाई जिसे आज भी दुनिया याद करती है।
1: दोस्तों एम्सन हमें सिखाते हैं कि साहस और तैयारी मिल जाए तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।
0: और गोर्की हमें ये याद दिलाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में इंसान को रोका नहीं जा सकता, कई बार वही परिस्थितियां उसे महान बना देती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे प्रेरणा का हिस्सा बन जाते हैं।

0: प्रेरणा, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में ऐसे कितने पुराने मोबाइल फोन पड़े होंगे जिनका आज कोई इस्तेमाल भी नहीं करता।
1: बिल्कुल नहीं, फालतू का कचरा हम नहीं रखते। पर कई सारे घरों में तो एक दो मोबाइल ऐसे होंगे ही जिनका चार्जर तक नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे लोग उन्हें फेंकते नहीं हैं।
0: और शायद यही हमारे साथ काफी सारे घरों की कहानी भी है।
1: बिल्कुल।
0: नया फोन आते ही पुराना फोन ड्रॉअर में चला जाता है, फिर सालों तक वहीं पड़ा रहता है। लेकिन कुछ युवाओं ने इसी प्रॉब्लम को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा।
1: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैशिफाई के फाउंडर्स की। कैशिफाई आज भारत के सबसे लोकप्रिय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है, जहां लोग अपने पुराने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेच सकते हैं।
0: लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इसकी शुरुआत किसी बड़े ऑफिस या बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं हुई थी। कैशिफाई की स्थापना मनदीप मनोचा, नकुल कुमार, नितिन गुप्ता और विकास जायसवाल ने मिलकर की थी। शुरुआती सोच बहुत ही ज्यादा सिंपल थी कि जब लोग नया फोन खरीदते हैं तो पुराने फोन का क्या करें।
1: और शायद यही स्टार्टअप वर्ल्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है। कई बार सबसे बड़े आइडियाज किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं से निकलते हैं।
0: कुछ साल पहले अगर किसी को पुराना मोबाइल बेचना होता था ना, तो उससे पहले तो बायर ढूंढना पड़ता था, प्राइस को लेकर एक अलग ही कन्फ्यूजन होती थी, ट्रस्ट इश्यूज का तो अलग ही कहना था, और कई लोग डेटा सिक्योरिटी की वजह से भी फोन बेचने से डरते थे।
1: बिल्कुल, यानी मार्केट तो थी लेकिन प्रोसेस करना आसान नहीं था। और कैशिफाई ने इसी गैप को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां कस्टमर अपने डिवाइस की वैल्यू जान सके, उसे आसानी से सेल कर सके और डेटा सेफ्टी को लेकर भी भरोसा महसूस कर सके।
0: शुरुआत आसान नहीं थी, हर स्टार्टअप की तरह कैशिफाई को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मार्केट को एजुकेट करना था, ट्रस्ट बनाना था और लोगों को कन्विंस करना था कि यूज डिवाइसेस की रीसेल भी ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकती है।
1: लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया और आज कैशिफाई भारत के कई शहरों में अपनी प्रेजेंस रखता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिजिकल स्टोर्स भी ऑपरेट करता है।
0: और यही स्टार्टअप जर्नी की खूबसूरती भी है, एक आइडिया, फिर एक सॉल्यूशन और धीरे धीरे वही सॉल्यूशन लाखों लोगों तक पहुंच जाता है।
1: चिन्मय, एक और इंटरेस्टिंग बात है, कैशिफाई सिर्फ बिजनेस नहीं एनवायरनमेंट के प्रस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट आज दुनिया का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज माना जाता है। अगर डिवाइसेज रीयूज और रिसाइकल हो तो वेस्ट कम भी हो सकता है और रिसोर्सेज की बचत होती है।
1: यानी एक तरफ कस्टमर्स को वैल्यू मिलती है, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। और शायद यही मॉडर्न स्टार्टअप्स की पहचान बनती जा रही है, प्रॉफिट के साथ साथ पर्पस भी।
0: अगर युवा इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा नई टेक्नोलॉजीज में ही नहीं छुपी होती। कई बार अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रॉब्लम्स में होती है जिसे लोग रोज देखते हैं लेकिन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते।
1: और कैशिफाई के फाउंडर्स ने यही किया। उन्होंने एक आम समस्या को पहचाना, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला और उसी सोल्यूशन को स्टार्टअप में बदल दिया।
0: तो कैशिफाई की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी है।
1: और शायद यही यंग टेक्नोक्रेट की असली पहचान भी है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देखता, वो टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान भी खोजता है। और यही सोच एक आइडिया को स्टार्टअप और स्टार्टअप को सक्सेस स्टोरी बना देती है।

0: प्रेरणा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि खाना खाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है, तो शायद जवाब होगा भूख मिटाना।
1: बिल्कुल। और अगर खाने के शौकीनों से पूछा जाए तो वे कहेंगे स्वाद। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि तुम कोई अलग जवाब देने वाले हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज बात सिर्फ खाने की नहीं, उस सोच की है जो खाने के पीछे छिपी होती है, और इसी से जुड़ा है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जो हर साल 18 जून को मनाया जाता है।
1: वैसे चिन्मय, ये गैस्ट्रोनॉमी शब्द सुनने में थोड़ा सा फैंसी लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, समझाओगे?
0: अगर आसान भाषा में कहूँ तो गैस्ट्रोनॉमी का संबंध फूड कल्चर से है, यानी सिर्फ खाना खाने से नहीं, बल्कि भोजन कैसे बनता है, कहाँ से आता है, उसकी परंपराएं क्या है, और उसका समाज व पर्यावरण से क्या संबंध है।
1: और इसी में आता है सस्टेनेबल, यानी टिकाऊ, मतलब ऐसा फूड सिस्टम जो आज की जरूरतें पूरी करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को नुकसान भी ना पहुंचाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि खाना हमारी थाली तक पहुंचने से पहले एक लंबा सफ़र तय करता है। किसान मेहनत करता है, पानी का उपयोग होता है, परिवहन होता है, और फिर भोजन हमारी प्लेट तक पहुंचता है।
1: और शायद इसी वजह से आज लोकल फूड को भी काफी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली चीजें कई बार ज्यादा फ्रेश होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगता है।
0: सही कहा, और भारत जैसे देश में तो हर क्षेत्र अपना ट्रेडिशनल फूड कल्चर रखता है। राजस्थान की बाजरे की रोटी, दक्षिण भारत के मिलेट बेस्ड फूड्स, पूर्वोत्तर भारत के ट्रेडिशनल डिशेस, ये सिर्फ रेसिपीज नहीं है, ये हमारे देश की विरासत भी है।
1: बिल्कुल चिन्मय, आजकल न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी जो है उसको भी साथ में देखा जाता है, क्योंकि अगर फूड सिस्टम सस्टेनेबल होगा तो लोगों को बेहतर भोजन भी मिलेगा।
0: और यही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे का मुख्य संदेश भी है, कि भोजन का सम्मान करें, फूड वेस्टेज कम से कम करें, स्थानीय किसानों का समर्थन करें, और ऐसी आदतें अपनाएं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छी हो।
1: दोस्तों, एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो है फूड वेस्ट। दुनिया के कई हिस्सों में लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ काफी मात्रा में खाना बर्बाद भी हो जाता है।
0: और शायद सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत यहीं से हो सकती है, कि जितनी जरूरत हो उतना ही ले भोजन का।

0: सम्मान करें और वेस्ट को कम से कम करने की कोशिश करें।
1: तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हमें सिर्फ खाने की कीमत नहीं, सोच समझकर खाने की सीख देता है।
0: क्योंकि अच्छी थाली सिर्फ स्वाद नहीं देती, वो स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण तीनों से जुड़ी होती है।
1: और जब हमारी फूड हैबिट्स जिम्मेदार बनती है तो उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं, पूरे समाज और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। और शायद यही सस्टेनेबल फ्यूचर की सबसे स्वादिष्ट शुरुआत है।
0: तो दोस्तों, याद रखें, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जिनमें कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि स्टार्टअप शोर मचाकर नहीं बल्कि अपनी सादगी और काम से हासिल किया जाता है।
4: बिल्कुल प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही अभिनेता की जिन्होंने 90 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया और फिर अचानक फिल्मों से दूर हो गए, लेकिन जब लौटे तो पहले से भी ज़्यादा प्रभावशाली अंदाज में। हम बात कर रहे हैं अभिनेता अरविंद स्वामी की, जिनकी जयंती 18 जून को मनाई जाती है।
3: दोस्तों, अरविंद स्वामी का जन्म 18 जून 1970 को चेन्नई में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फिल्मों में आने की कोई बड़ी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन किस्मत उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित निर्देशकों में से एक मणिरत्नम के पास ले गई।
4: और फिर आई थलपति, रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्में। खासकर रोजा और बॉम्बे ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। उनकी शांत मुस्कान, सहज अभिनय और स्क्रीन पर मौजूदगी ने उन्हें उस दौर में काफी पसंदीदा अभिनेता बना दिया।
3: लेकिन उनके जीवन की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अभिनय से दूरी बनाकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। बाद में एक गंभीर दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। चलना फिरना तक मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
4: और शायद यही वजह है कि उनका जो चरित्र है वो काफी प्रेरणादायक है। संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने शानदार वापसी की और अपनी फिल्म थानी ओवरटून में सिद्धार्थ अभिमन्यु को ऐसा दमदार कैरेक्टर निभाया कि नई पीढ़ी उन्हें एक बार फिर हाथों में देख लिया।
3: बिल्कुल, उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो वो है थलपति, रोजा, बॉम्बे, मिनसारा कन्वू, कडल, थानी ओरवन, डियर डेड, चेक्का चिवंथा, वानम और थलाईवी जैसी बहुत ही शानदार फिल्में।
4: पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो थानी ओवरून में उन्हें शानदार अभिनय के लिए सिमा अवार्ड और एडिसन अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में भी कई बार सहारा गया है।
3: दोस्तों, अरविंद स्वामी की यात्रा हमें यह बताती है कि प्रतिभा और समर्पण समय के साथ साथ निखर जाते हैं।
4: और सिनेमा की दुनिया का दूसरा खूबसूरत पहलू यही है कि कुछ सितारे अनुभव से चमकते हैं तो कुछ अपनी उम्र के कारण बड़ी प्रतिभा के लिए।
3: हमारी अगली शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबों में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने कैमरे के सामने अपनी अलग पहचान बना ली
4: और आज वे भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित युवा अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। आइए मिलते हैं अभिनेत्री सारा अर्जुन से, जिनका नाम प्रतिभा, मेहनत और कम उम्र में मिली बड़ी सफलता के लिए पर्याय बन चुका है।
3: दोस्तों, सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 को मुंबई में हुआ। उनके पिता राज अर्जुन स्वयं एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, लेकिन सारा ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने विज्ञापनों और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था।
4: और उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण बनी तमिल फिल्म देवड़ा थिरुमलंग। इस फिल्म में उन्होंने भावनात्मक अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। इतनी छोटी उम्र में इतनी सहज और परिपक्व अदाकारी कम ही देखने को मिलती है।
3: इसके बाद सारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी फिल्मोग्राफी में 404, देवा थिरुमगल, एक थिडायन, जज्बा, सांड की आंख, पेनीन सेल्वन और हाल ही के वर्षों में रिलीज हुई धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज जैसी फिल्में शामिल है।
4: सारा अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मिली लोकप्रियता को ही अपनी मंजिल नहीं बनाया। वे लगातार सीखते हुए परिपक्व अभिनेत्री के रूप में आगे बढ़ रही है।
3: दोस्तों, सच ही कहा गया है, प्रतिभा उम्र नहीं देखती और सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जो मेहनत से अपने हुनर को निखारते हैं वे छोटी उम्र में भी बड़ी पहचान बना लेते हैं। और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली शख्सियत की ओर, और जिनमें आज जब हम क्रिकेट में चौके छक्कों की और की बरसात देखकर जहां हम रोमांचित होते हैं, तो शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि भारत में आक्रामक बल्लेबाजी की यह परंपरा दशकों पहले से शुरू हो चुकी थी।
4: बिल्कुल प्रेरणा, और उस परंपरा के सबसे चमकदार सितारों में से एक थे सैयद मुश्ताक अली, जिनकी पुण्यतिथि 18 जून को मनाई जाती है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट का पहला एंटरटेनर बल्लेबाज भी कहा जाता है।
3: 17 दिसंबर 1914 को इंदौर में जन्मे सैयद मुश्ताक अली ने ऐसे समय में क्रिकेट खेला जब भारतीय क्रिकेट अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन उनकी निडर बल्लेबाजी ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया।
4: उनके जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण 1914

0: 36 का इंग्लैंड दौरा था। ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक लगाया और वे इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज भी मील का पत्थर मानी जाती है।
1: दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने महान बल्लेबाज विजय मर्चेंट के साथ मिलकर भारत के लिए पहली 300 से अधिक रनों की टेस्ट साझेदारी भी की थी। उस दौर में यह एक असाधारण उपलब्धि रही।
0: घरेलू क्रिकेट में भी उनका दबदबा कम नहीं था। वे प्रसिद्ध होल्डर टीम क्रिकेट का हिस्सा रहे जिसने कई बार रणजी ट्रॉफी जीती और उनके योगदान से होलकर भारतीय घरेलू क्रिकेट टीम सबसे सफल टीमों में गिनी जाती है।
1: सम्मानों की बात करें तो वर्ष 1964 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। यह सम्मान भारतीय क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान की पहचान था।
0: और शायद उनके सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। भारत का प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट उनके नाम पर खेला जाता है। आज देश में कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं।
1: यानी सैयद मुश्ताक अली सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि भारतीय क्रिकेट में आत्मविश्वास, आक्रामकता और मनोरंजक बल्लेबाजी की सोच से के अग्रदूत थे।
0: 18 जून 2005 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका नाम हर साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के माध्यम से नई पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित करता रहता है।
1: दोस्तों सच ही कहा है, कुछ लोग मैदानों में रिकॉर्ड बनाते हैं और कुछ अपनी प्रतिभा से पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा ही मुकाम हासिल किया।
0: और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे ही कुछ नाम सिनेमा की दुनिया में भी मिलते हैं जिन्होंने अपने दौर की परिभाषा बदल दी।
1: बिल्कुल, जिस तरह सैयद मुश्ताक अली ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी अलग पहचान बनाई, उसी तरह भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जिनकी खूबसूरती, व्यक्तित्व और अदाकारी के चर्चे पूरे देश में हुआ करते थे।
0: उन्हें लोग प्यार से वीनस ऑफ इंडिया कहते थे और कई बार फिल्म इतिहासकार उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार भी मानते हैं।
1: 4 जुलाई 1916 को जन्मी नसीम बानो का असली नाम था रोशन आरा बेगम। उस समय समाज में फिल्मों को सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन नसीम बानो ने परंपराओं और सामाजिक संकोच की सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी राह खुद बनाई।
0: कहा जाता है कि अभिनय के प्रति उनका जुनून इतना गहरा था कि विरोध और कठिनाइयों ने भी उन पर रोक नहीं लगा सकी और शायद यही साहस आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।
1: 1930 और 1940 के दशक में जब भारतीय सिनेमा अपने शुरुआती स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहा था, तब नसीम बानो उसकी सबसे चमकदार सितारों में से एक बन चुकी थी। तलाश हक, खून का खून, पुकार, उजाला, नौकर, चल चल रे नौजवान, बेगम मुलाकात और अनोखी अदा जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया।
0: खासकर पुकार ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लोग उनकी खूबसूरती के चर्चे तो करते ही थे, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता की भी उतनी ही प्रशंसा थी। और यही कारण है कि उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि अपने समय की सबसे बड़ी महिला स्टार माना गया है।
1: और दोस्तों दिलचस्प बात यह भी है कि उस समय न तो फिल्म फेयर पुरस्कार थे, न ही आज की जैसी पुरस्कार प्रणालियां, इसीलिए उनके नाम के आगे ट्रॉफियों की लंबी सूची हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन लाखों दर्शकों का प्यार, उनकी अपार लोकप्रियता और इतिहास में दर्ज उनकी पहचान ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है।
0: और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी जब भारतीय सिनेमा का में महान अभिनेत्रियों की बात होती है तो नसीम बानो का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए वह रास्ता बनाया जिस पर आगे चलकर कई सितारों ने सफलता हासिल की।
1: उनकी विरासत केवल उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उनकी बेटी सायरा बानो ने भी हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और इस तरह भारतीय सिनेमा को एक खूबसूरत कलात्मक विरासत मिली।
0: 18 जून को उनकी पुण्यतिथि पर हम उस महिला को नमन करते हैं जिसने केवल पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि भारतीय सिनेमा में महिलाओं और उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
3: फसा! अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, ब्रिगेडी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चिन्मय, जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्तियां लिखी थी, तब वे सिर्फ एक कविता नहीं लिख रही थी, वे उस ज्वाला का वर्णन कर रही थी जिसने पूरे भारत को जगा दिया था।
4: चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और उस तलवार का नाम था लक्ष्मीबाई। लेकिन प्रेरणा, क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास ने उसे झांसी की रानी कहकर थोड़ा सा छोटा कर दिया?
3: बिल्कुल, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है, यह कहानी है उस बच्ची की जिसने बचपन में अपनी माँ को खोया, उस युवती की जिसने अपने समय की परंपराओं को चुनौती दी, उस माँ की जिसने अपनी गोद उजड़ते देखी, और उस विधवा की जिसका सहारा छिन गया, और उस योद्धा की जिसने अपना राज्य, अपना सुख, अपना जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोया।
4: बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि उन्होंने कैसे युद्ध लड़ा, हम जानेंगे कि आखिर किन दर्दों, किन संघर्षों और किन बलिदानों ने मनु को लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया।
3: तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं काशी की एक नन्ही बच्ची से, नाम था

0: मणिकर्णिका घर में सब प्यार से उन्हें मनु कहा करते थे।
1: लेकिन किस्मत ने मनु को जल्दी बड़ा कर दिया। बचपन में ही उनकी माँ का निधन हो गया। जिस उम्र में बच्चों को माँ की गोद चाहिए होती है, उस उम्र में मनु ने अपने आंसू छुपाना सीख लिया था।
0: शायद इसी दर्द में उन्हें असाधारण बना दिया। जहाँ उस समय लड़कियों के को घर की चौखट तक सीमित रखने की सोच थी, वहीं मनु घोड़ों की पीठ पर दौड़ रही थी, तलवार चलाना सीख रही थी और धनुष बाण साध रही थी।
1: नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे साथियों के बीच उनका बचपन बीता। वीर शिवाजी की गाथाएं उन्हें कंठस्थ थी, मानो इतिहास उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो।
0: फिर आया वर्ष 1842, जिसमें उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और मनु बन गई रानी लक्ष्मीबाई।
1: महल था, सम्मान था, झांसी की प्रजा का प्यार था। लगता था कि जीवन अब सुखद राह पर चल पड़ा है।
0: लेकिन नियति ने उनके लिए संघर्षों का एक और अध्याय लिख रखा था। उनके पुत्र का जन्म हुआ, पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह नन्हा राजकुमार दुनिया छोड़ गया।
1: सोचिए प्रेरणा, एक माँ जिसने अपनी गोद को उजड़ते देखा हो, उसके हृदय पर क्या बीती होगी।
0: समय बीता, दंपति ने एक बालक को गोद लिया, दामोदर राव। लगा कि जीवन फिर मुस्कुराने लगा है, लेकिन तभी अंग्रेजों ने कहा, हम इस बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे।
1: और यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने लक्ष्मीबाई को इतिहास की अमर वीरांगना बना दिया।
0: जैसे यह आघात कम था, वैसे ही कुछ समय बाद महाराजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया।
1: अब एक युवा विधवा, एक अकेली माँ और एक संकटग्रस्त राज्य, और सामने दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत।
0: अंग्रेजों को लगा कि अब झांसी को अपने अधीन करना आसान होगा। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर दावा ठोक दिया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे किसी साधारण शासक से नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई से टकराने जा रहे हैं।
1: एक ऐसी रानी जिसने पुत्र खोया, पति खोया, लेकिन अपने साहस को नहीं खोया।
0: और फिर उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
1: और दोस्तों, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक स्त्री के स्वाभिमान की हुकार थी। यह अन्य विरोध का विद्रोह था। यह उस चिंगारी की पहली लौ थी जो आगे चलकर स्वतंत्रता की मशाल के रूप में उसने जन्म लिया।
0: अंग्रेजों ने एक राज्य को जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसी माँ, एक ऐसी रानी और एक ऐसी योद्धा को चुनौती दे रहे हैं जो अपने सम्मान, अपने पुत्र और अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ने वाली है।
1: फिर आया वर्ष 1857। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गूंज पर पूरे देश में सुनाई देने लगी। झांसी भी अब रणभूमि में बदल चुकी थी। किला चारों ओर से घिरा हुआ था, तोपें गरज रही थी और तलवारें चमक रही थी, और इतिहास अपने सबसे साहसी अध्यायों में से एक लिखने की तैयारी कर रहा था।
0: और फिर इतिहास ने वह दृश्य देखा जिसे सदियां कभी नहीं भूलेगी। एक माँ पीठ पर अपना छोटा बेटा, हाथ में तलवार और सामने अंग्रेजों की विशाल सेना।
1: उस दिन सिर्फ झांसी की रानी नहीं दौड़ रही थी, उस दिन भारत का स्वाभिमान दौड़ रहा था।
0: झांसी से कालपी, कालपी से ग्वालियर, एक युद्ध समाप्त होता तो दूसरा सामने खड़ा मिलता, लेकिन लक्ष्मीबाई थकी नहीं, झुकी नहीं।
1: और फिर आया 18 जून 1858। ग्वालियर के निकट कोटा की सराय का रण क्षेत्र, उम्र मात्र 29 वर्ष,
0: लेकिन साहस सदियों से बड़ा।
1: युद्ध करते करते वे वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते। वे विचार बन जाते हैं, वे प्रेरणा बन जाते हैं, वे इतिहास बन जाते हैं।
0: वो हार सकती थी पर झुकना नहीं जानती थी, वो रुक सकती थी पर रुकना नहीं जानती थी, वो मर गई लेकिन पराजित कभी नहीं हुई।
1: इसलिए लक्ष्मीबाई को एक रानी नहीं है, वो एक भावना है,
0: एक इतिहास नहीं एक प्रेरणा है।
1: बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, यही वादा है। आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं प्रेरणा,
9: मैं चिन्मय,
8: नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोताओं ने सुना अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त है हिंदी में समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटिक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.

0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हंड्रेड 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest work.
1: FM रेडियो लेक सिटी, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम झुमकू।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

आज तो सूरज जिस तरह बादला में ही हो और तावड़ो थोड़ो मन दोवेवा लाग गयो है और अबे मानसून आवा वालो है तो गर्मी री शाम तो विस्तर भी आपने और माने गणी सुहानी लागे ऐसा। गर्मी री सांझ हो, हाथ में कूलर री चाय हो और मुझे काना में ऐसा राजस्थानी लोकगीत हुनवाने मिल जाए तो मन रो मयूर तो अपने आप ही झूमवा लाग जावे, है नहीं सा?

राजस्थान रो लोक संगीत ही कुछ ऐसा है कि सुनता ही मन अपने आप गांव में, बागा में, गलिया में और बचपन की यादा में खो जावे। अब एक अगलो राजस्थानी लोकगीत और हुना सा, इमें मन कई कहवे हुनो सा।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा।
4: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

वीरो बिन जारू रे, यो लोकगीत तो आपने जानो पहचानो लाग्यो वेगा। अंडो बदलियो तको रूप अबार आपानी लोकगीत में हुन रहा, जिनमें अनिल नागोरी और किरण कुमावत रे आवाज में यो लोकगीत हो। आजकल मोबाइल री दुनिया में सब पड़ गया है और अनि दुनिया में दादी नानी री कहानियां लोकगीता रो मजो अगर हुनवा पड़े तो मजो ही अलग आई जावे। जटे दूर राजस्थानी लोकगीत री आवाज अगर काना में पड़े वन टाइम आपने यूं लागे कि वास्तव में मीठा मीठा मुख मिश्री गुलरी है सा। कुछ ऐसो ही राजस्थानी लोकगीत साधना सरगम री आवाज में आओ हुना सा।

मीठा मीठा मुकसू बोलो सा। कहवे कि राजस्थानी गीत सिर्फ गीत नहीं, भावना है। कदी में प्रेम है, कदी विरह है, कदी में मेला ठेला रहा है, तो कदी मस्ती है, और कदी कदी बनी सारा गीत है। अबे कुछ असोई राजस्थानी लोकगीत सोनू कंवर री आवाज में आओ होना सा।

तो यो हो आजरो आखरी लोकगीत। जिससे झुमको कान में सचकर खूबसूरती बढ़ावे, विस्तरी लोकगीत जीवन में मिठास घोले है सा। और नी प्यारा सा लोकगीत रहा ते आजरो सफर पूरो भियो। झुमको कार्यक्रम अबे अटे पूरो भियो। राम राम सा, हंसता रहो, मुस्कुराता रहो और अपनी राजस्थानी संस्कृतियों यूं ही जुड़िया तका रहो। राम राम सा, खमा गणी सा, मिलाला एक नई रंगीली महफिल झुमको में पाछा।

शाम के 7 बज चुके हैं। लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई और सुनते हैं कार्यक्रम जय माला बस कुछ ही पलों में। कंदरे आजान फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल, हंसराज बैल का संगीत।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म से ये गाना, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। गाता

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गाइड फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल।
1: पापा
2: लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाएंगे।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे गैम्बलर फिल्म से ये गाना, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। जयमाला कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। शक्ति फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुन रहे हैं आप ये गाना आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है हमारे खूबसूरत बाल। बालों का श्रृंगार तरह तरह से किया जाता है, पर अगर किसी के या किसी वजह से आपके पास आपके कुदरती अच्छे खूबसूरत बाल नहीं हैं, तो आज के जमाने में आप विग लगा सकते हैं और जो आपके चेहरे को सूट करे और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं अनवर पावस्कर, जो विग बनाते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को निखारते हैं। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को आपने आज यहाँ बुलाकर मुझे बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहता हूँ, कभी पब्लिक से आप लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। मगर मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है।
0: तो आपकी ये जो खूबी है कि आप विग बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या मतलब आपके यहाँ ऐसा ये व्यवसाय चलता था?
1: देखिए, परिवार की जहाँ तक बात है, मैं हूँ रत्नागिरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है अनवर पावस्कर। अब ऐसा है मैडम, हमारे गांव में तो इतना कोई इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में या ऐसे लोगों ऐसे कामों में कोई आगे नहीं था। मेरे घर के लोग भी एक छोटे से घर के कामों में रहते थे, जैसे हमारे आम के वहाँ बागात है, खेती वगैरह है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जब मैं बॉम्बे में आया था तो मुझे स्कूल के जमाने से एक शौक था पेंटिंग का, यानी कि लोगों की शक्लों को, अगर किसी की दाढ़ी लगा दो तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी के यहाँ मसाला लगा दो उसके मुंह पे तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी को काणा कर दो एक आंख से तो कैसा लगेगा। ये बचपन से एक शौक सा था कि इंसानों के चेहरे को मैं बिगाड़ता था, बनाता था, बिगाड़ता था, बनाता था। जब बॉम्बे में मैं आया तो बॉम्बे में मैंने फिल्मों में देखा एक आदमी जवान आदमी को बूढ़ा बना के दिखाया जा रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर दिखाया जा रहा है। और वो जब मैंने मालूम किया, सीखा वहाँ से, कुछ पूछा लोगों को, तो मालूम पड़ा कि एक मेकअप नाम की ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान इंसान की शक्ल को बदली कर सकता। अच्छा, मेकअप के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है नकली बालों का, दाढ़ी का, मूंछ का। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ सोचा जाए, और सोचते सोचते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आज मैं 33 साल से फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ।
0: 33 साल?
1: 33 साल मेरी उम्र है, 54। और ये काम मैं आज तक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, मगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि बिना किसी गुरु के ज्ञान लेकर आया हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं देख देख कर अपने आप को सीख रहा
0: हूं। हम में अगर सीखने की कोई ललक हो तो ये तो पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि आप गुरु अपने मन में मान लीजिए किसी को, और सच्ची लगन से अपना काम करिए तो आपको सफलता जरूर।
1: हाँ, तो गुरु हुआ ना उसके अंदर भी। हाँ। आपकी जो सच्ची लगन थी वो आपका गुरु हो गया।
0: जी हाँ। तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आपने किसको संवारा?
1: अभी भट्टाचार्य। बहुत पुराने एक्टर्स थे, बंगाल के थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास एक मूछ लेकर पहुंच गया था, तो मेरी उम्र उस टाइम पे बड़ी छोटी सी थी, और वो देखते रह गए, बोले बेटे किसने बनाई है? बोला मैंने बनाई है। तो उनको यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है लगा के दिखाओ। तो जो उस वक्त एक मेकअप मैन थे जो मुझे थोड़ा सा पुश कर रहे थे, उन्होंने काफी, मैं तो बहुत डर रहा था उस टाइम पे उनके नजदीक जाते हुए, कि मैं पहली बार किसी फिल्म एक्टर के नजदीक गया था। और जब मैंने वो मूछ हाथ कांपते हुए लगाई थी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो लगी थी, मगर मेरे को नहीं मालूम पड़ी वो टेढ़ी मेढ़ी, मगर उनको मालूम पड़ गई थी। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई ये बराबर नहीं है, सही नहीं, ताकि उनको मालूम है बच्चा है, हिम्मत हार जाएगा। तो अभी बड़ा चाहते जिसने कहा बहुत अच्छी लगाई आपने मुझ, और बहुत अच्छी बनाई आपने। जबकि बाद में उन्होंने बोला था मेरे को कि बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने किसी सामने बोला।
0: मतलब उन्होंने एनकरेज किया?
1: बिल्कुल बिल्कुल। उस आदमी का आज तक मैं एक शुक्र ऐसा मानता हूँ, बेचारे इस दुनिया में अभी है नहीं वो, मगर उन्होंने मुझे जो धक्का दिया तो मैं लड़खड़ा था, वो आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद में मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, समझ लीजिए आज आज इस मकाम पर हूँ कि इंडस्ट्री के दिलीप साहब से लेकर अमित जी तक मुश्किल से कोई मेरे हाथ से बचा होगा।
0: चलिए बहुत।
1: अगर किसी की विग नहीं बनी है तो किसी की दाढ़ी बना दिया हूँ, किसी की दाढ़ी नहीं बनी है तो किसी की मूंछ बना दिया हूँ, अगर कुछ नहीं बनाया तो मेकअप तो कर ही लिया उनका।
0: बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जैसे मूंछ लगाई, तो जो ये विग बनाते हैं आप या मूंछ दाढ़ी जो भी कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल जो बाल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: वैसे नायलॉन की भी बनती है, मगर उसमें जो नेचुरलिटी आनी चाहिए वो नहीं आती है। असली बालों से जैसे विग बनती है या दाढ़ी मूंछ बनती है, उसकी बात ही कुछ और आती, लगता है कि बिल्कुल नेचुरल ही आपकी दाढ़ी है या नेचुरल ही आपके बाल है।
0: तो कहाँ से आपको वो नेचुरल बाल?
1: उसमें एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर की एक खासियत है, बालाजी का मंदिर है वो, और काफी लोग मानते हैं उनको। वहाँ पर ऐसी श्रद्धा है लोगों के दिलों में कि वो अपने सारे बाल, बड़ी बड़ी जवान जवान लड़कियां अपने बाल पूरे वहां उतार के आ जाती है, फुल बॉल्ड होके, फुल टकली होके वहां से आती है, और वो सारे बाल, बहुत बड़ा कारोबार है ये बालों का, ये सारे बाल वहां से एक फैक्ट्री में जाता है, साफ होता है, साइज वाइज लगता है।

0: इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे भी मिलता हूँ लोगों को।
1: अच्छा, तो आप कैसे विग बनाते हैं?
0: एक्चुअली क्या होता है, जैसे फिल्मों की अगर कोई किसी की विग बननी है तो डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है वो हमको एक फोटोग्राफ बताएगा।
1: अच्छा,
0: कि भाई इस आदमी को हमको इसकी तरह बनाना है।
1: अच्छा, ये जो बाल आपने कहा कि एक्सपोर्ट भी होते हैं, आप भी उन्हीं लोगों से बाल लेते हैं जो असली होते हैं, तो ये क्या बहुत महंगा है?
0: अभी तक तो नहीं था, मगर अभी ये 2-3 साल से इतने महंगा हो गया है कि एक्सपोर्ट चालू हो गया बाहर
1: जी,
0: उसके रेट्स बढ़ गए सब अभी।
1: आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहे, अच्छा सा विग लगाना चाहे, तो क्या कीमत पड़ेगी एक विग की अपने इच्छा अनुसार जो आपको ऑर्डर करें?
0: अगर आप बनाना चाहें तो 5,000 की बन जाएगी, अगर आप बनाना चाहें तो 50,000 की बनती है।
1: अच्छा।
0: तो आपके ऊपर डिपेंड है, लोग कहते हैं जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा बनेगा।
1: तो उसमें क्या क्वालिटी में क्या फर्क
0: क्वालिटी
1: रहता
0: में
1: है?
0: जैसे बालों की क्वालिटी अलग अलग आती है, किसी के बाल बहुत ही सिल्की मुलायम होते हैं जो काफी महंगे मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: किसी के बाल बहुत ही लंबे होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं, किसी के बाल करली होते हैं जल्दी मिलते नहीं वो भी महंगे होते हैं। तो जैसे जैसे वो उसकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस भी बढ़ती कम होती जाएगी।
1: पर अगर कुछ नहीं होते, आप विग ऐसा बनाते हैं जिसमें करली बालों की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं
0: उसको? हम लोग मशीन से करते हैं ना, केमिकल से वगैरह पमिंग वगैरह करते हैं, उससे करली हो जाते हैं।
1: उसे करली,
0: हाँ, अगर करली बाल है तो उसको स्ट्रेट हो जाते हैं, वो तो बेचारे मजबूर बाल होते हैं, उनको आप जैसे शेप दो जो बोलो बेचारे मान लेते हैं।
1: अच्छा, एक शंका मेरे मन में ये आ रही है कि आप विग तो लगा लिया, फिल्म में कई टेक होते होंगे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि विग किसी का काम करते करते गिर गया हो, निकल गया, उसको फिक्स कैसे करते हैं?
0: वो क्या, जो हम लोग जिस मटेरियल से विग को फिक्स करते हैं वो एक गम आता है, वो हमारे इंडिया में बनता है, फिर एक फॉरेन का गम आता है, उसको हम लोग ला के जब फिक्स करते हैं तो आप उसको ऐसा पकड़ के उठा सकते हैं, इतनी उसमें ग्रिप होती है।
1: अच्छा, तो आम आदमी जिसको रोज अगर विग लगानी हो, आपसे उसने विग ली हो, तो उसको रोज ये अपने गम लगाना पड़ेगा और चिपकाना पड़ेगा?
0: यहाँ जो रोज पर्सनल यूज जो करते हैं उसमें तो एक टेप आता है जो डबल साइड टेप होता है, उससे आप लगा सकते हैं, या तो कैप की तरह पहन सकते हैं या क्लिप लगा सकते हैं। बहुत सी चीजें आज के जमाने में इतना इम्प्रूवमेंट है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा,
0: और जैसा आप बोलते हैं विग निकल जाएगा,
1: हाँ।
0: मैं तो बोलता हूँ लगने के बाद अगर हाथ से बड़े खींचे बाल निकलेगा नहीं, वो
1: नहीं निकलेगा,
0: नहीं नहीं, इसकी गारंटी इस बात से।
1: अच्छा, जैसे आपने पुरुषों के विग की बात की, महिलाएं अगर बहुत लंबे बाल चाहें तो ऐसा भी विग बनता है?
0: हाँ, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, जितने लंबे हैं, जितनी आपकी हाइट नहीं है,
1: हाँ,
0: उतने लंबे विग बन सकते हैं, बालों के भी और नायलॉन के भी, सिंथेटिक के भी।
1: अच्छा, और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो आम आदमी पर्सनल यूज के लिए विग इस्तेमाल करता है?
0: सावधानी कुछ भी नहीं है, कोई इसका तो आइटम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ की वायर वहां लग जाएगी तो आईसी उड़ जाएगा, जल जाएगा, बस पेन लिए, कंघी कर लिए, तेल लगा लिए, जैसे आपने असली बालों में जो होता है सब वही करना है, इसमें कोई ऐसा सावधानी वाली बात नहीं है,
1: कोई सावधानी की
0: नहीं,
1: जरूरत नहीं, बस आपके पॉकेट पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का
0: लंबे बाल अगर है तो पॉकेट भी लंबी रखनी चाहिए आपको। ये बात है, बालों की जितनी लंबाई होगी उसकी पॉकेट की लंबाई बढ़ जाएगी।
1: आप बेसिकली विग मेकर हैं या मेकअप मैन हैं?
0: बेसिकली तो प्रोफेशनल के हिसाब से विग मेकर हूं मैं।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मेकअप मैन हूं, मगर इसके अलावा कुछ और भी मेरे शौक्स हैं, जैसे मैं गाने गाते रहता हूँ हमेशा।
1: अब हम फिर से आपकी विग वाली बात पर आ जाते हैं, आपके अनुभव कैसे रहे विभिन्न कलाकारों के साथ जिनके आपने विग बनाए?
0: मैंने जिनके जिनके साथ काम किया उनसे मैंने हर इंसान से एक एक चीज सीखी। जैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार है, जिनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि जिंदगी में हमेशा इंसान को वक्त पर चलना चाहिए।
1: कौन है वो?
0: अब सुपरस्टार तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में एक ही है, और जिनको देखकर, जिन उनकी खासियत ये बताऊं मैं आपको, उनको देखकर लोग अपनी घड़ियां सीधी करते हैं।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया?
0: एक मेरे मनचाहे कलाकार है जिनका नाम है सचिन पिलगांवकर। देखिए, वो इंसान एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, डांस डायरेक्टर है, एक्शन है, ये समझ लीजिए कि एक फिल्म के लिए जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो पूरा पैकेज है। उनके साथ मैंने कम से कम 12-13 फिल्में की है मराठी, और सचिन साहब के मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के लिए विग बनाया हो और उसमें बहुत किसी ने मीन मेख निकाली हो?
0: ऐसा एक्ट्रेस जो होती है, एक्ट्रेस मतलब जो लेडीज स्टार्स होती है, उनके नखरे थोड़े ज्यादा होते ही है, तो हमको प्रोड्यूसर पहले बोलता है कि वो थोड़ी नखरेबाज है, तो तुमको खाली उनके सामने हाँ हाँ बोलना है, बाकी करना वही जो हम बोलेंगे। तो हम लोग भी क्या, हम लोग प्रोड्यूसर के आगे हम लोग भी कठपुतली रहते हैं, क्योंकि पेमेंट हमको वहीं से मिलना है, हीरोइन तो पेमेंट करेगी नहीं, तो हमको उनके हाँ में हाँ मिलाकर इनके साथ रहना पड़ता है। तो हम लोग भी यस मैडम करते रहते हैं, क्योंकि उसने बुलाओ हमको, खाली तुम्हारे खाली यस मैडम बोलना, नो बोलने का ही नहीं।
1: अनवर जी, आपसे मैं ये जानना चाहती थी कि कई बार कैंसर जैसी बीमारी की वजह से जो उसमें इलाज होता है कीमोथेरेपी, बाल चले जाते हैं।
0: ये तो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हर आदमी को फेस करना पड़ता है। पर क्या होता है, कीमो एक ऐसी चीज है ना मैडम, कि वो जैसे इंजेक्शन बदन में जाता है, एक ही रात में तकिए पे सारे बाल रह जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या पेशेंट बहुत डर जाता है,

0: तो मैं वीक तो बाद में रहता हूँ, पहले पेशेंट से 2-4 घंटा बात करता हूँ। तो कैंसर से जब बाल जाते हैं तो मैं तो मोस्टली अभी आपको एक बताऊंगा बात कि मैं यहाँ से पुणे तक गया अपने खर्चे से, अपने पेट्रोल से, उनका मेजरमेंट लेने के लिए, उनको वीक देने के लिए, और मैं उनसे चार्ज नहीं करता हूँ।
1: अच्छा,
0: ये मेरी खासियत है। जब भी
1: मतलब जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनसे आप चार्ज?
0: मैं चार्ज नहीं करता हूँ। कभी कभी कोई बोलता है नहीं इतना महंगा, हमने वहाँ पूछा था, वहाँ पे उसने 18,000 रुपया बताया था, यहाँ पूछा था उसने हमको 20,000 रुपया बताया था। मतलब उसने बताया था आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ मेरे पास रेडीमेड भी रहता है, जैसे हमने शूटिंग में जो शूटिंग होने के बाद में बचते हैं,
1: हाँ,
0: वापस रहते हैं मेरे पास, तो मैं उनमें से एडजस्ट कर देता हूँ उनको। कभी कभी कभी कभी कुछ होता है ऐसे जो बहुत पैसे वाली होती है, बोले नहीं हमको मेरे जैसे थे ये फोटो देख के आपको ऐसा ही बनाना है, तब मैं क्या करता हूँ, मजबूरी में बोलता हूँ मैडम अगर आपको पर्टिकुलर ऐसा बनाना है तो मेरे को खाली आपके बाल के पैसे आप दे दीजिए, या तो बाल ला के दे दीजिए, आपको ये आदमी से मिला देता हूँ जो हमारे एजेंट हैं, लोग बाल लेते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए कि मेरे 300 ग्राम बाल चाहिए मेरे को, अब कितना पैसा लोगे आप, उसको उसकी पेमेंट कर दीजिए, आई विल मेक फ्री, मैं उसका जो मेकिंग चार्ज लूंगा आपसे। ऐसा भी मैं कई बार करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी बात है ना, क्योंकि आदमी जब केमो लेता है तो उसको 2-4 लाख रुपये ऐसे खर्चा हो जाता है उसका, उसके बाद उसके ऊपर मैं और एक प्रदर्शन डाल दूँ बाल का तो अच्छा लगता नहीं।
1: तो ऐसा जो करता है उसका खुद अच्छा ही होता है ना?
0: मेरा तो हमेशा अच्छा हुआ है, और जो मैं कर रहा हूँ आजकल जो हेयर वीविंग का जो चक्कर है, हेयर पेस्टिंग जिसको मैं बोलता हूँ, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो आपकी स्किन के ऊपर खाली पेस्ट हो जाएगा मगर लगेगा बिल्कुल नेचुरल।
1: अच्छा, उसको भी निकाल के रखना पड़ता है?
0: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं,
1: वो लगा ही रहता है, एक लगा।
0: हाँ, यस यस,
1: मतलब जितने बड़े लगाए वो बड़े बढ़ेंगे नहीं, बस
0: बढ़ेंगे, बस उनके हाइट मुखरी की तरह
1: धो सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शैम्पू कर सकते हैं,
0: शैम्पू लगाइए, तेल लगाइए।
1: अच्छा, खर्चा कितना आएगा? अगर
0: 5,000 से शुरुआत ड्रामा होता है उसका तो 50 तक जाना है।
1: अच्छा, ये विग के साथ इसका भी ऐसा ही?
0: अभी आजकल विग कोई पहनता ही नहीं, जमाने खत्म, खाली फिल्म में यूज होती है बस,
1: मतलब थोड़ी देर के लिए।
0: हाँ। बाहर जो आजकल लगाते हैं वो हेयर वीविंग करा लेते, पैच लगा लेते हैं आजकल।
1: अच्छा।
0: और इतनों के लगे हुए यू कांट, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको इतने नेचुरल लगते हैं आजकल।
1: अनवर पावस्कर जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे श्रोताओं को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में, आज हमारे साथ थे विग मेकर अनवर पावस्कर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून

आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी।

0: चली गई। ओहो कहाँ गई? अभी अभी तो यहीं रखी थी मैंने, न जाने कहाँ चली गई।
1: कौन मम्मी?
0: तू अपना काम कर बेबी, चल यहाँ से। मैं जरा देर के लिए यहाँ से उठ के आ गई कि वो गायब हो गई। कोई काम करना मुसीबत है, करो तो मुश्किल है, ना करो तो मुश्किल। अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं कोई गीत गा रही हूँ क्या? स्कूल नहीं जाना है?
1: नहीं नहीं मम्मी, जाना है जाना है, लेकिन अभी नहाने के लिए।
0: ठीक है तो जा। जब कोई काम करने चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो, लेकिन कहना आसान है, उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आइडिया किसी को नहीं।
2: बहू जी मैं पूछूं कि आप किसको उबालना है? आलू तो उबल गए।
0: मुझको उबाल दे मुझको। तुझे भी इसी समय आना था, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही। जा कुछ भी उबाल ले।
2: मैं पूछूं बहू जी क्या हो गया? कुछ
0: देख मोहिनी मेरा सर मत खा, जाकर रसोई में अपना काम कर, मेरी लक में तो ट्रबल है।
2: लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी कि तेरे बुल तो बहुत महंगा आवे हैं, आप कितने रुपए गज लाई हैं?
0: ओफो जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है, तेरे बुल नहीं ट्रबल, ट्रबल मुसीबत। जा अपना काम कर।
2: अच्छा अच्छा मैं चलूं।
0: ओहो इसमें भी नहीं है, कहाँ चली गई? किस बुरी घड़ी में लेकर बैठी थी। ठीक है ना मिल, आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी।
3: अरे ये सब क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, लाल बार कहा कि मेरे बीच में मत बोला करो।
3: मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, होश तो ठिकाने है।
0: अरे आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं।
3: ये तूफान क्यों आया हुआ है? पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो?
0: आपने कहा कि फटे कपड़े घर पर ही सी लिया करो, पैसे बचेंगे, यही सोचकर मैंने दो दर्जन सुइयां भी मंगा ली। कल से तीन खो चुकी हैं, एक आज लेकर बैठी थी, जरा देर के लिए उठी यहाँ से, वो भी गायब हो गई।
3: ओहो तो पागलों की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाए।
0: तो और क्या करूं, आपसे इतनी बार कहा है कि हाथ से सीने वाली मशीन ला दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं, दूसरे की तकलीफ से आपको क्या मतलब?
3: मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आ नहीं जाएगी देवी जी, उसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा। हाँ अब क्या है इंसाफ, देखो जब मिल जाए।
0: मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा, सभी कपड़े घर पर ही सी जाया करेंगे, और फिर सुइयों के खोने का भी डर नहीं रहेगा। बोलिए कब लाएंगे मशीन?
3: देखो भाई मैं तारीख तो नहीं बता सकता, मगर वादा करता हूँ कि ला जरूर दूंगा। अरे रे रे ये क्या कर रही बेबी? अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ।
1: डैडी नहाने के बाद फ्रॉक पहनी,
3: हाँ
1: देखिए सुई घुस गई।
3: अरे सुई
0: देखो तो
3: ये रही। नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है बेबी, ये घुसी नहीं चुभी है, चुभी है, चल चल भाग जा यहाँ से।
1: मैं तो इतनी जोर से और आपके लिए।
3: क्यों भाई तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली है?
0: अच्छी है।
3: और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ, चलती भी बहुत हल्की है।
0: मेरे तो इतना ही चलाने में हाथ उठने लगे, दरअसल कभी चलाई नहीं है ना, वैसे जैसा आपने कहा हल्की तो चलती है।
3: भाई आप चाहे हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी, और सुन लो अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जी के यहाँ से ले नहीं जाएगा।
0: भाई देखिए अभी तो जाएंगे ही, जब मैं सीना सीख लूं तब बंद कर दीजिएगा।

0: सीखूंगी भी किसे?
1: क्यों, मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं, किसी से भी सीख सकती हो। उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई, बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है।
0: यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली तो आ नहीं
1: जाएगी। अब इजीली फिजीली मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि अब कपड़े दर्जी के सिलने नहीं जाएंगे, बस।
2: ओखो मशीन, मैं पूछू बहू जी जो मशीन क्या लाया है, बड़ी सुंदर लगे हैं। मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि हे भगवान, हमारे बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी।
0: हाँ हाँ, सबों के सी दूंगी, अब मुझे और कोई काम तो रही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा रसोई में जाकर अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी।
2: ये तो हो गया, अब कैसे काटूं?
3: मैं बताऊं बहू जी?
0: तू क्या बताएगी, ये कोई रोटी थोड़ी ही जो झट से बता देगी कि ऐसे बेली जाती है। ये पजामा है, पजामा।
3: नहीं बहू जी, जे टाइम बर्मियाइन जी आपके काटना बताए थी, हम गौर से सुने थे।
0: अच्छा बता, आप कैसे काटूं?
3: बड़ा सुने थी। देखिए, इसको जोर से कोई तानने। अच्छा, फिर कैंची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए और ऐसा ले जाते हुए यहाँ मिलो दीजिए, तब देखिए कैसा फिट बैठे।
0: बेबी, बेबी,
4: क्या है मम्मी?
0: ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे, यहाँ से ए ऐसे।
4: अच्छा मम्मी।
0: अरे रे, इतना तान मत, रस्सा कशी मत कर इसके साथ, धीरा करना थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, फिर मत खींचना।
4: अच्छा,
0: मैं काटती हूँ।
4: काटिए। ये क्या है मम्मी?
0: ये कैसा हो गया?
4: ये तो
0: तिरछा हो गया।
4: ये पैजामा है भला।
0: मैं तुझसे कब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो एक सा बैठा ही नहीं जाता, अब क्या करूं?
3: एक काम हो सके है बहू जी, सिलते वक्त बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए।
0: हाँ हाँ, ये बात तूने ठीक बताई, सिलाई में दबा देती हूँ।
3: दबाइए। हाँ ये आओ।
0: ठीक, जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है।
4: क्या हुआ?
3: हाय बहुजी, सुई तो बैगी की उंगली के आर पार हो गई।
0: हाय मैं क्या करूँ?
3: बहुजी पहिया आगे घुमाओ।
0: नहीं नहीं बेटे, घबराओ नहीं। अरे मोहिनी, जो डॉक्टर को बुला।

0: इससे नहीं मोहनी, साग से खिला। आज तूने साग में नमक बहुत कम डाला है।
1: हाँ बहू जी, मैंने जान के कम छोड़ा, रोज रोज ज्यादा हो जावे है।
2: मुझे भी खिला मोहिनी, तब से बातें किए जा रही है।
1: खिलाती हूँ बेबी, खिलाती हूँ, बारी बारी से कौर दूंगी। दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ। बहू जी, बाबू जी आज लौटेंगे?
0: हाँ आ जाते होंगे।
1: एक महीना तो हो गया होगा बाबू जी को गे।
0: हाँ एक महीने से तो ऊपर हो गया। राम मोहिनी, जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो।
1: अच्छा अच्छा बहू जी।
3: बेबी, बेबी, दरवाजा खोल बेबी।
0: आती हूँ। जा मोहिनी देख, वो आ गए शायद।
1: मैं जाती हूँ। बाबूजी, नमस्ते बाबूजी।
3: नमस्ते, कहो भाई सब ठीक ठाक है ना? अरे लीना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया?
0: अरे क्या बताऊँ क्या हुआ, वो शर्मियाइन एक दिन अपनी लड़की की 3 फ्रॉक सिलवाने आई थी, तो शटर लगाते वक्त उनकी लड़की ने मशीन गिरा दी और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया।
3: मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ?
0: अब मना भी तो नहीं किया जाता जरा से काम के लिए।
3: कौन है मोहनी?

0: जा देख तो कौन है। और हाँ बेबी, तेरे हाथ का क्या हाल है?
1: अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ डैडी, अब शायद ही इम्तिहान दे पाऊँ, कलमी नहीं पकड़ी जाती।
0: अरे नहीं नहीं, पकड़ लेगी, जरा ध्यान से पढ़ती रहो, बस इम्तिहान तक सब ठीक हो जाएगा।
2: बहू जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है, जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है।
0: मोहिनी, नौकरानी गई?
2: हाँ बाबू जी।
0: जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो, और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है, समझी?
2: अरे सुनिए तो, मैं वापस करा दूंगी शाम को, अभी भी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगी।
0: मान जाए बुरा, मुझे कौन से इश्तराई थोड़ी नहीं बनी। जा जा, मेरा मुंह क्या ताक रही।
2: जी जी, जाती हूँ। बेबी देख तो कौन है।
0: भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद है।
2: देखिए आपस में ये सब करने ही पड़ता है, जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता।
0: बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने, जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा फरसिया है, 2 महीने हो गए मशीन है।
1: डैडी, घोष बाबू की लड़की आई है।
0: क्या कह रही है?
1: कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं आकर कुछ कपड़े सिल लूं।
0: सुन लिया तुमने नीना? बेबी जाकर कहते मशीन खाली नहीं है।
2: अरे नहीं नहीं, सुन बेबी, कहना कि मिसेस झा के यहाँ मशीन गई है, वहाँ से मंगा लूंगी, तब आकर सी लीजिएगा। जा।
1: अच्छा।
0: क्या क्या कहा तुमने, यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे गई है?
2: अच्छा, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मिसेस झा ने एक दिन के लिए मांग ली, यही रखे रखे क्या होता, कोई खींच तो जाएगी नहीं।
0: हाँ ठीक है, किए जाओ परोपकार, मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकारी और कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूँ नीना, एक दिन ना पछताओ तो कहना, मैं कहता हूँ वो यहाँ आकर नहीं सी सकती क्या?
2: ओ, आप तो
0: ठीक है, मेरा क्या है?
1: डैडी
0: क्या है?
1: एक मिस्त्री आया, उसने ये पर्चा दिया है।
0: क्या है दिखा। नीना, ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी?
2: दुकान पर?
1: हाँ मम्मी, गई तो थी वही, जब डॉली ने उसके अंदर सलाकड़ाकर पहिया चला दिया था।
2: हाँ, जरा सी खराब हो गई थी।
0: ये देखो, मैं पूछता हूँ कौन देगा ये रुपए? अब मांगो जाकर मिसेस जिंदल से या मिसेस झा से, कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से।
3: बाबूजी।
0: ओ, ओ, आप कौन है? कौन है भाई?
3: मैं आपके आया हूं, मशीन लाया हूं।
0: चले आओ अंदर।
3: अच्छा, कहाँ रख दूं बाबूजी?
0: यही मेज पर रख दे। ये मशीन को क्या हुआ?
3: बहूजी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छू दी थी, सो थोड़ी सी खराब हो गई।
0: ये
3: है।
0: थोड़ी सी खराब हुई है?
2: क्या हुआ?
0: हुआ है हमारा सर, और क्या। देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग है? आगे की रॉड के 2 टुकड़े, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो 2-1 जनों के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना वो भी किनारे लग जाए।
2: ये तो इतनी टूट गई, मुझे क्या मालूम था।
0: ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया तुम्हें। ए, तुम कहाँ किसके जा रहे हो? उठाओ ये मशीन, चलो मेरे साथ।
3: कहाँ बाबू?
0: जहाँ मैं कहूँ वहाँ।
2: कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, उनके घर मत जाइए।
0: तुम चुप रहो जी, ना होगी खैरात और ना बटेगी। मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना। भगवान बचाए मशीन के चक्कर से।
4: मशीन का चक्कर, ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी, आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति थी।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की आवाज में सुन रहे हैं आप रॉकस्टार फिल्म से ये गाना। इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

जाने तू या जाने ना फिल्म से सुन रहे हैं आप ये गाना राशिद अली और वसुंधरा दास की आवाज में, अब्बास टायर वाला के बोल या रहमान का म्यूजिक।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
10: आरबीआई कहता है,
11: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए गजनी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: चित्रलो कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया।

0: और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसईजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः

0: परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में परिंदा फिल्म से ये गाना, खुर्शीद हलोरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

मुल्तान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की प्रतिभा

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा मुख

0: आया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।
2: झुका लो बड़े बड़े नैना, झुका लो बड़े बड़े।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी।

और सेक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

0: जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रीदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: देखो टर मारे

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को

वो अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

0: तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।
1: जा।

वो खफा क्या हुए, जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूम घट तो जरा ओढ़ो, आह मानो का।

0: कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो

0: दिलाया।
1: आज के छाया गीत में बस इतना ही, दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
2: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वी को वजीदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल-पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय।

है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।